नेत्र। फिर मेरे सतगुरु कहते करना सुने काहू की गुरु दे कहे बचने मान लिया। आप जिन्हें मेरे भैन भरा बैठे हो बच्चिया बैठे हो सारे अपने अंदर झाती मार के वेखो की आप गुरु के बचन मान लै ने। कू केंदे आ चुगेंदे आ मत्ती लेंदे आ नित नेता प्रति गुरु नानक दे घर आउंदा है ते मेरे सतगुरु नूं तरला पाउंदा मेरे सतगुरु जी मेनू गुरमत बख्शो। रोज कहिंदे हो सिखां नूं सिखी दान रहत दान गुरमत दान ते एक शब्द अगे जांदे कहिंदे हो विवेक दान कहिंदे हो ना। एक बार बोलो की कहिंदे आ ते विवेक दा मतलब हुंदा विवेक बुद्धि निर्मल बुद्धि मेनू बख्शिश करो। ते गुरु दी इहदे नालों निर्मल बुद्धि की हो सकदी आ कि अखां नूं पवित्र रखी कन्नां नूं पवित्र रखी जीभ दे नाल परमेश्वर दा नाम जपी उस जगह ते जाई चरण चलो मार्ग फिर मन लिया। गुरु रोज कहिंदा चुगली ना करी गुरु रोज कहिंदा परका बुरा ना राखो चीत तुमको दुख नहीं पाई। की अपने आप नूं शीशे विच कदी खिला रहे हो अपने आप नूं पुछो नी मेरी ये जिंदड़ी है मैं किसे दा बुरा नहीं करदी मैं छड़ता गुरु दे कहण ते बुरा। बेड़े ते उन्हां दे पार होने ने गुरु दे प्यारे हो जिन्हां गुरु दी मत लई आ ते उहदे उत्ते चले ने। केवल सुननी नहीं सुनिया फिर दूसरी अवस्था मन्निया सुनिया ते फिर ओ गुरु दे बचना नाल मन कीता भाओ मैंने प्रेम। असी ते गुरु नूं गुरमुख प्यारे हो जितना हजारां सालां तों टल खड़कण वाले पंडित कदी मंदरां दे विच आउंदे सी प्रसाद चढ़ाउणे मूर्ति दे अगे राके लै जाणे ना मूर्ति ने दुध पीना ओह दुध आप जाके घर पी लेना आण के टल खड़का लेने ते कहना असी पूजा करके आए। आखो सतनाम श्री बाहर देव पखालीए बारों देव नूं बाहर दे देवतियां नूं नवाउणा ही सिखिया पड़ता वांग। आपां वी गुरुद्वारे आउणे आ लंगर छकदे आ इहना गुस्सा ना करना कि रोज लंगर ते तवा लाउंदा है। मेरा कहण दा मकसद ए आ कि गुरु कोल जितना दे आए हो ना मेरे वीरो जदों जांदे हो इतना दे जाओ ना कुछ ते तब्दीली होवे। चंदन का बिरवा भला बेड़े ओ टाक भलास वो भी चंदन होए रहे बसे जो ऐथो तुसी मुड़ो ते जदों गुरु दे प्यारे हो मुड़ के जाओ ना ते तुहानू मिलने वाला कोई आपे ही पुछे वो तू कित्थों आए तेरी रसना ते अमृत आ गया तेरिया अखा विच शर्म आ गई तेरे कान कहिंदे ने मैं चुगली नहीं सुननी तेरे हाथ कहिंदे ने मैं शराब नहीं फड़नी तेरा मुंह कहिंदा मैं मांस नहीं खाना आखिर तू आया कित्थों आ। लोकी पुछण तुहानू भी तुसी कित्थों आए हो ते तुसी फिर बड़े माण नाल आखो मैं अपने गुरु कोलों आया मैं अपने गज के कुआर आखो कित्थों आया। जदों सतगुरु गरीब नवाज पातशाह नूं सुदरसन राजा मिलिया ना प्यार नाल एक बार आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। कवल नैन राजे दा भणेवा सी ए सुदरसन ते धन गुरु नानक पातशाह जदों दीन दुनिया दे मालक संगला दीप गए ने ना प्यार नाल एकाग्रता च आण के अपनी सुरत नूं गुरु दे शब्द विच जोड़ के फिर एक बार आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। गज के आंदे हो मैनूं बल मिलदा है सतनाम श्री वाहेगुरु। संगला दी विच गरीब नवाज पातशाह जदों गए ने ते बाहर जाके मरदाने नूं कहिंदे ने मरदानिया इस पिंड विच चलिया जा सुन वाला बड़ा प्यारा वचन है इस पिंड विच जा ते इस पिंड दे विचकार एक खूह आऊगा ते खूह दे सज्जे हथ जिहड़ा दरवाजा है ना उस घर जावी उत्थे इक झंडे नामी व्यक्ति रहिंदा है ध्यान दिओ उत्थे इक झंडा बाडी नामी व्यक्ति रहिंदा है। ते जदों सारियां डायरेक्शनां दसियां ते मरदाना तुर पिया ते दो कदम ते जाके फिर मुड़ के आंदा मेरे मन में एक हैरानी आई आ कि सतगुरु पहली बार ते मैं उदासी ते तुहाडे नाल इस इलाके च आया मैनू ए नहीं समझ आई तुसी ए भी दस्या है कि पिंड दे विच एक खूह आ खूह दे सज्जे पासे एक घर आ उत्थे झंडा बाडी नाम दा व्यक्ति रहिंदा है पहलो भी कदी आए हो इत्थे। ते सतगुरु हस के कहिंदे मरदाने उहदे गुप्त वचन नहीं पुछी दे हुंदे तू जा जिहड़े पासे तैनूं भेजिया जा उहनां नूं मिल के आ। जदों उत्थे गया ते झंडा बाडी दे कोलों जिहड़ियां वस्तु महाराज ने मंगाईया मुड़िया ते झंडा बाडी ने एक गल कही कि ओह दिलां दीआं जानण वाला दिलां विच रौवां भरन वाला जीवन बदल देण वाला कित्थे बैठा है। ते मरदाने ने आख्या ओह पिंड दीआं मड़ियां च बैठा है वेखो बाबे नानक दे बहण दा टिकाणा पिंड दीआं मड़ियां च बैठा है। ते झंडा बाडी कहण लगा हां तुसीं चलो असीं पिछे पिछे जा रहे हैं। ते हर शहर दे विच सत्संगियां दी आपो अपनी दोस्ती हुंदी आ गुरमुख

सचेत हो सतगुरु गुरु नानक पातशाह दी पावन बाणी दे कि जे तेरी गठड़ी दे विच गुण होए जे तेरी गठड़ी दे विच परम पिता परमेश्वर दी बख्शी रहत होई ते परमेश्वर आप तेनु कहूगा आ खालसा मेरो रूप है खालसे मैं हूं करूं आ प्यार नाल आण के दोवे बावां पहाड़ पहाड़ जड़ियां भारी भजान के भारी भरोसो वड्डियां बावां वाला बापू आखूगा खालसा मेरो पिंड प्राण खालसा मेरी जान की मगरों ता आखूगा जे तू गुणा दी मालक होएगी ते अवगुण वाली नू ते मेरे साहब कहिंदे मेरे कंत ना पावे चोलड़ा प्यारे क्यों धन छेजे जाए मेरे साहब कहिंदे ने अवगुण यारी कंत ना पावे बोलो अवगुण यारी सारे बोलो जरा अवगुण यारी मन की खोटी खोट कमावे मन की खोटी अवगुण यारी उस मालक नू चंगी लगदी नहीं मन दी खोटी खोट कर दिया फिर का सावना जाने मूड़ा अंदरों पिरदा सा उदे सुभा नू इन्हें जानिया ही नहीं कि मेरा पति ते उन्हां नाल प्यार करदा जिहड़ियां गुणवंती ने जिहड़ियां गुणां दीआं मालक ने ते आपा इस करके गुरमुख प्यारे मेरे सतगुरु दे चरणा विच बेनती करनी आ कि आपा नू सतगुरु गरीब नवाज जी कृपा करो निर्गुण यारे गुण नानके निर्गुण यारे गुण नानके हे मेरे सतगुरु गरीब नवाज मैं निर्गुण यार वा मेरी झोली दे विच गुणा दी दात पा जेड़े गुणा दा जेड़ी रहत जेड़े नाम सिमरन बंदगी जेड़े जीवन दा सदका मेरा ते तेरा विछड़े दा मलाप हो जाए वो

नाम साचा नाम मेरा आधार। सच्चा नाम मेरा आसरा है, सच्चे परमेश्वर का नाम मेरा आसरा है। कलयुग दे विच मेरी इज्जत पत रखण वाला मेरे को इको ही गहना है, इको ही परमेश्वर की टोक है दिती हुई जड़ी सतनाम श्री वाहेगुरु। नाम वालियां दे अपने सेवक दे पर्दे ढकदा है, अपने सेवक की लाज पत रखदा है। जेड़े नाम जपदे ने ना उन्हां नूं मेरे साहब जी कहिंदे ने औखी घड़ी ना देखण दे अपना बिरद संभाले हाथ दे राखे अपने को सास सास प्रत पाले। जेड़े नाम जपदे ने उन्हां नूं रोगन ते अर सोगन ते जल जोगन ते बहु भात बचावे उन्हां ते शतर अनेक चलावत कावत उतन एक ना। कितना रखदा जी, कितना बचाउंदा है, राखत है अपनो कर दे कर कर मने हाथ उन्हां नूं अपना हाथ दे के बचा लैंदा। राखत है अपनो कर दे कर पाप समूह न पेटन पावे और की बात कहां कह तो सो पेट ही के पट बीच बचावे। माता के उदर में प्रतपाल करे सो क्यों मनो वसारिये, मनो क्यों वसारिये ए वड दाता जे अगन में आहार पहुंचावे। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह। इतना लिखिया गुरबाणी दे विच के मां दे पेट विच ए पुट्ठा, इतना गुरबाणी विच लिखिया कि जिथे अग्न पखे पड़हारे अग दे लाटां बगदियां सी इहदे चार चफेरे जीव दे उर्द मुख महा गुबारे पुठा मूह थले नू लत्ता तां नू ते बड़ा अनेरा सी उथे जिथे मां दे पेट विच अग विच जल रिहा सी विचारा। मगर उथे ए जप रिहा सी वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह। उथे जो जपदा सी ना इतना शब्द लिखे एकाग्रता बख्शे आखो सतनाम श्री जिथे अग्न पखे पढ़हारे उर्द मुख महा गुबारे ते ध्यान देना है। उथे लिखिया सास सास संभाले सोई, ए सास सास उस वाहगुरु नू याद करदा सी। उथे अग दे विच गुरमुख प्यारे ए 24 घंटे वाहगुरु की याद विच जुड़िया सी ते उथे फिर अग दे विच उथे खसम छडाए लिया इनू उथे पुठे लड़के नू उथे खसम छडाए लिया। बोलो हां उथे खसम, फिर बोलो उथे खसम। उथे पुठे लड़के नू किन्ने छडाया, खसम दे वाहेगुरु ने। ते जदों इथों छडा के बाहर ले आंदा इतना लिखिया है विचों गर्भे निकल आया। बोलो विचों गज के आख्या करो उस फोटो नू वेख के, उस तस्वीर नू वेख के उथों छडा के किसी ने गवाही दे के एदी जामनी भर के किसी ने उथों छडा के बाहर लिया विचों गर्भे निकल आया। बोलो विचों गर्भे निकल आया। जदों बाहर आया खसम वसार दुनी चित लाया, खसम वसार दुनी चित लाया। फिर बोलो खसम वसार दुनी चित लाया। बस विचों बाहर आया ते ओ जिहड़ा छडाउण वाला सी ओ भुल गया, दुनिया चेते आ गई, मम्मी चेते आ गई, चाचा चेते आ गया, नानी चेते आ गई, फुफी चेते आ गई, हुण ए चेते ने। ते माया अमर वरताया, माया दा हुक्म चलन लग पिया। मेरे सतगुरु कहिंदे जैसी अगन उधर मैं तैसी बार,
माया जितना अग्न अग दी अंदर च तरले पाउंदा सा है मैं सड़ जूंगा आ बार माया दी अग विच भी बंदिया इथे भी तरले पाओ उस वाहेगुरु नूं इथे भी तेनू जे अंदरों दी अग विच उहने छडाया वा ना ते इस अग दे विचों भी तेरी सहायता उहने ही करनी है इथे क्यों भुल गया है ए अग विच सड़ जाएगा जे अंदर दी विचों बच के आ गया वा ते अरबा संखा नीला रूहां बाहर दी अग विच ममता दी अग विच मोह दी अग विच काम दी अग विच सड़ गईआं ई जे इस अग तो भी बचना ही ते हुण भी जपया कर सतनाम श्री वाहिगुरु हुण भी वाहिगुरु दा सिमरन करिया कर हुण भी बंदगी करिया कर हुण भी आवाजां मारिया कर उस मालक नूं हे मेरे सतगुरु गरीब नवाज मात गर्भ मैं अपन सिमरन दे तैं तुम राखण हारे इत्थे भी हुण पावक सागर था लहर मैं तारो

सारे आखो सारे ही हुण आपां व्यापार करन आया। एक बचन गुरबाणी दे विच मेरे साहब ने बहुत कीमती, वैसे तो एक एक बचन कीमती, गुरबाणी सारी हीरियां मोतियां जवाहरां नाल मड़ी, गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ। एक शब्द बड़ा प्यारा मेरे साहब जी ने प्यारा बचन किया है, कहिंदे तां व्यापारी जानिए, बोलो तां व्यापारी, व्यापारी शब्द बड़ा पछाणिया तुहाडा, तां तुसी व्यापार करन ते सारे ही आए हो, हर बंदा घरों व्यापार करन जांदा है, मगर जेड़ा घाटा खा के चल जाए ना मेरे मित्रों गुरसिखो भाईओ, ते उन्हूं लोकी कहिंदे नहीं इन्हूं व्यापार करना आया ही नहीं, जेड़ा घाटा खा के चल तां वा गुरमुख प्यारे हो के कुछ तां व्यापारी जानिए लाहा लै जाओ, लाहा व्यापारी ते तां ही किसे कहना लै भी इहदे प्यो ने 10 रुपया की रास पा के दिती सी, इह 10 दे नाल 100 कमा के लाया, बड़ा वड्डा व्यापारी है, मगर आपां नूं ते गुरमुखो मूल दिता परमेश्वर ने सुवास, आखिया एक एक सुवास दे नाल परमेश्वर की बंदगी करके लाहा खट के आई, मगर इथों कोई गुरमुख रूहां ते लाहा खट के चले गईयां, मगर मेरे वर्गे मनमुख प्यारे जेडे मनमुख दियां गल्लां मन दियां गल्लां सुनदे रहे, मन पिछे लगे रहे, गुरु दी गल ना सुनी, ए ना सुनिया पीवो पौल खंडे धार होए जन्म सोहला, ते मन दियां गल्लां सुनिया के शराब पीला, जेडे मन दियां गल्लां सुनदे रहे। मेरे साहब कहिंदे चले मूल गवाए मनमुख चले।

0: गुरमुख लाल गए गुरमुख लाल गए
1: गुरमुख लाल गए
0: चले मूल गवाए मनमुख चले।

0: गुरु आखो जी सतनाम श्री भाई रे भाई रे राम कहो भाई रे राम कहो बोलो भाई रे
1: राम कहो
0: चित लाए हर जस वखर ले चलो इथो जान लगे पंडा बन के जाओ इथो जाके लाद खेप संतें संग चाल जिस वखर को लैण तू आया राम नाम संतन घर पाया ता जब मान लिहो मन मोल राम नाम हिरदे में लाद खेप गड्डे लद के जदो सरकारे दरबारे जावे तू निरंकार दे दरबार विच ओथो तक तेरे गड्डे खलोते होण ते पुछण भाई कौन आया है ते आखणे भजनीक सिंह आया है ए जरनैल सिंह आया है ए रजिंदर सिंह आया है ए गुरु का प्यारा आया है की करके जी ए गड्डियां दे विच की भरिया है ते किते ऐसा ना होवे फोल फोल के वेखिए ते विचों चुगलियां निकलन विचों निंदिया गड्डे ते दोवां दे लदे जाने ने चंगियाईयां बुरियाईयां बोलो चंगियाईयां फिर एक बार आखो कादे गड्डे लदे जाने चंगियाईयां बुरियाईयां वाचे धर्म हजूर उस धर्म की हजूरी विच जाके धर्मराज के हजूर विच दो ही चीजा ते परखियां जानियां बंदिया तेरियां चंगे ते मंदे कर्म ते वेख कोई एहो जिहा कर्म कर तेरी एक एक पंड दे विचों निकले सतनाम श्री वाहिगुरु तेरी एक एक कहो नानक समझ रे एने आज काल खुले तेरी गांठुली बोलो आज काल खुले तेरी आ बचन जरा चंगी तरह बोल लो कि अज जा कल उथे जाके तेरी गठली खुलनी गांठुली गांठुली मैने गठ इथो जज हुंदा बाणी विच मेरे साहब कहिंदे ने कि गठा मार रहा बंदा हर रोज इहदियां गठा बन रही ने ते कहिंदे कहो नानक समझ रे आने बोलो कहो नानक समझ रे हे मेरे आने मना हे आने जीव ए गल समझ ला कि आज काल खुले तेरी गांठुली बोलो आज काल खुले तेरी उथे निरंकार दे दरबार च तेरी गठ खुलनी है चेता कर उस गठ दे विचों की निकलूगा किते चुगलियां ना निकलन किते निंदिया ना निकले किते शराब दियां बोतलां ना निकलन किते मास ना निकले किते कुकर्म ना निकलन जेड़ी जेड़ी तेरी गंढ परमेश्वर खोले ओदे विचों निकले सत नाम वाहे गुरु सत नाम वाहे गुरु सत
1: नाम वाहे गुरु
0: भैणो गज के
1: नाम वाहे गुरु
0: मेरियां धीआं गज के जरा

वाह वाह वाह वाह वाह वाह। अच्छा ऐनी प्यास लग गई हो, ऐनी अंदर तड़प पैदा हुई हो, ऐनी वे तो बिना उदास हो गई है, सिर देण नू तैयार है। आंदी हां सजना नैण हमारे पिरिया रंग रंगारे, मेरिया अखां उहदे रंग विच रतियां गईयां ने, 24 घंटे होर किसे नू नहीं देख दिया, ए 24 घंटे गाउंदियां ने, एक भोरी दर्शन दी जय, एक भोरी दर्शन दी जय, एक भोरी बाहां तरला तुसी वी, एक भोरी

सोहेला हो जन्म सोहेला हो ते फिर घर खड़े उन्हें मेनू वखाया अजीबो करीब मंजा रखिया है मंजे दे उत्ते बलविंदर सिंह दी फोटो लाई फोटो दे कोल चौर रखिया है मैं क्या कदी आया है कहिंदा आया मेरे घर मैं क्या ओदे सामने ओदी फोटो दे चौर करदा सा कहिंदा जी ओदी सामने ओदी फोटो दे चौर करदा सा आखिर मन विच की छुपिया इन्हां लोकां दे शर्म भी नहीं आउंदी लज्जा भी नहीं आउंदी एक बंदा होके मेरी फोटो दे उत्ते कोई चौर करे चलो मगरों कोई अज्ञानी करे चवर तख दा मालक ते धरती ते इको या गुरु ग्रंथ साहब महाराज पातशाह जे ते चौर हो सकदा है होर किसे ते चौर नहीं हो सकदा 1978 दे विच जेड़े 13 सिखा गुरमुख प्यारिया ने शहीदी पाई सी इसे करके पाई सी कि निरंकारी बाबा अपने सिर ते चौर करवांदा सी कहिंदे असीं नहीं वेखणा चौर हो सकदा है ते केवल गुरु ग्रंथ साहब दे उत्ते हो सकदा है ते गुरमुख प्यारे इहदी फोटो दे उत्ते उहने चौर रखे ते चौर करदा है ते मालक दे गुटके उहने मंजी दे थले रखे जांदिआं दास ने पहलो मारी फोटो भवा के उहदी चुक के ते फोटो सुट के मैं कहा सजना इस मंजे दे उत्ते ए चादर जिहड़ी नापाक होई है दी फोटो दे नाल इहनू चुक इत्थे पवित्र चादर विछा जे गुरु दा अमृत लैणा ही ते इस मंजे दे उत्ते हुण पोथियां रख जिथे अगे फोटो सी पोथी परमेश्वर का थान ओनू थान दे जिहड़ी पोथी परमेश्वर जोगी इस करके गुरमुख प्यारे बचना है ते अंदरों अपने उस मालक लई कहना है एक छिन अंदर

हे साहब जी ए जड़ी रोज अरदास हुंदी आखो सतनाम श्री हे साहब जड़ी रोज अरदास हुंदी आ खालसे दी भावे अकाल तख्त ते अरदास होवे भावे हजूर साहब अरदास होवे भावे तख्त श्री पटना साहब अरदास होवे भावे केसगढ़ साहब अरदास होवे दुनिया दे हर कोने दे गुरुद्वारे विच हे मेरे सतगुरु सुख मंगी जांदी आ खालसे दी जहां जहां खालसा जी तहां तहां रचिया रियायत रोज अरदास कीती जांदी आ ते मेरे सतगुरु जिन्हां दी रोज अरदास हुंदी आ उन्हां दी कलास दे विच मैनू भी रला ला मैनू भी खालसा बना ला अरदास करो मेरिया भैणा बच्चिया वीर गुरसिख फिर एक एक दा नाम दस के अरदास ना करौनी पवे रोज सुते सिद पटीशन हो जाए रोज सुते सिद अरदास गुरु दे घर विच रोज एप्लीकेशन तुहाडी लगे जे तुसी खालसे बन जो ते इस करके परसों ए भागा वाला दिन आना है कोई मेरी भैण कोई बच्चा मन दे प्रभाव थले आण के गुरु दा पल्ला ना छड्ड दिओ दो तरह दा जीवन हुंदा है गुरु मर्जी ते मन मर्जी गुरु मर्जी ते मन मर्जी ए मन मर्जी होगी जिहड़ा आखोगे अजे साल खलोना है ए गुरु मर्जी होगी कि जिहड़ा कहिंदा हर जपदिआं ढिल ना कीजी मेरी जिंदड़ीए मत जापे सा आवे के ना आवे राम ए गुरु दी मर्जी होगी कि मेरे गुरु दा उपदेश होगा पियो पौ लखंडे तार पियो पौ

ज्यों बुलावहो ज्यों बुलावहो त्यों नानक दास बोले, ज्यों बुलावहो ज्यों बुलावहो।

बड़े प्यारे वचन ने, समझने की कोशिश करियो। एक बार आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। खोजद्या खोजद्या वो अमृत मिल गया। जेड़ा अमृत पीण दे नाल जीव अमृत अमर हो जांदा है। अमृत पीवे अमर सो होए। बोलो अमृत पीवे अमर सो होए। एहो हर रस पावे जन कोए। कोई किते करोड़ा दे विच्चों नहीं, तो छोटे छोटे संख्या ने अमृत तो दूर रख लेना है। जेदे ते सतगुरु गरीब नवाज बाबे नानक दा हर दरवाजा मेहर दा जेदे घर नूं खुल गया, ओदी रूह ने आखना चलो अमृत छकी है, गुरु वाले बनी है। नहीं ते निके निके फुरनिया ने एवें निके निके फुरनिया ने गुरु दे अमृत तो वांझिया कर देना है। एहो हर रस, बोलो एहो अमृत की आ, हरी दा रस आ। एहो हर रस पावे जन कोए। कोई दा मतलब कोई करोड़ा दे विच्चों जेदे ते मेहरबान बापू होवे, ते जिन्हां नूं इह हरी दा रस मिल गया, अमृत नाम आ उस हरी दे रस दा, ते साहिब कहिंदे ने अमृत पीवे अमर सो होए। अमर हो गया। अमर दे अखरी अर्थ समझो अमार। अमर शब्द आपां कहिंदे कई वार बहुती वार ते पता नहीं हुंदा सानूं। अमर मरन तो रहत, जिन्हें हुण मरना ही नहीं। साहब कहिंदे ने इह पक्की गल आ, जिस जीव दे मुंह दे विच अमृत पै गया उन्हें नहीं मरना मुड़के। अमृत पीओ सदा चिर जीवो। हुण सदा चिर वाला जीवन मिल गया। रोज रोज दा आवा गमन मिटे प्रभ सेव, आप त्याग शरण गुर देव। सतगुरु कहिंदे ने जिहड़ा आवागमन दा चक्कर आ जीव आत्मा दा, जदों गुरु दी शरण विच आउंदी आ, गुरु दी पनाह विच आउंदी आ, गुरु दी बारगाह विच आण के डिग के अमृत दी दात मंगदी आ अपने बापू दे कोलों, ते जन्मां दी विछड़ी होई नूं जदों अमृत मिल जांदा है, उस दिन इहदा आउण जाण दा चक्कर मुट गया। आवागमन मिटे। बोलो आवागमन। बड़ा ढिल्ला बोलदे हो, गज के बोलो। बाबा नानक तुहाडे ते मेहरबान होवे। आखरी दीवाने अज पता नहीं नदी नाम संजोगी मेले ने रस बख्शो, दास नूं भी सेवक दिओ, सेवा दिओ। आवागमन मिटे। बोलो आवा कदों? प्रभ सेव, जदों प्रभु दी सेवा विच हाजिर हो गया, जदों आप त्याग शरण गुरदेव, आपा छड के त्याग के गुरु दी शरण विच जीव आत्मा डिग पीना आण के, ते साहिब कहिंदे ने उदन इहदा आवागमन मिट गया। इउं रतन जन्म का होए उधार। ए रतन जन्म दा उधार हो गया, एदा भला हो गया जीव आत्मा दा। ते मेरे सतगुरु गरीब नवाज पातशाह जी कहिंदे ने ए जिहड़ा हरी दा रस आ जिन्हां नूं मिल गया अमर हो गए, उन्हां मुड़के मुड़ना नहीं, उन्हां ने मुड़के किते नहीं आउणा। कोई जीव आत्मा चक्कर दे विच ना, उस दिन तो ए अमर हो गई जिस दिन तो इनू अमृत मिल गया। अनंत अनंत जन्म दी बंदगी करन वाले बहुत सारे लोग जिन्हां नूं अमृत नहीं मिलिया, मैं सतगुरु दी हजूरी विच मेरे गुरु दी फिलोसफी मुताबक कह रहा वा कि उन्हां दा आवागमन नहीं मिटदा, जिहड़ियां रूहां अमृत नहीं छकदियां। आखो सतनाम श्री। फिर आउणा पैंदा है, फिर आउणा पैंदा है, फिर आउणा पैंदा है। कहिंदे जी असीं बाणी बड़ी पढ़दे हां, सिमरन बड़ा करदे हां, जे अमृत ना छकीए ते साडी गति नहीं हो सकदी। नहीं हो सकदी। ए डंके दी चोट ते मेरे सतगुरु गरीब नवाज दे विचारां मुताबक दास राव जी दा कह रहा है कि जिन्ना चिर जीव आत्मा अपना सिर दे के गुरु दे चरणां विच मिटदी नहीं, जिदन मिट गई उदन बन गई, जिदन मिट गई उदन ही बन गई। जिन्ना चिर मिटदी नहीं, जिन्ना चिर आण के डिगदी नहीं चरणां दे विच, उन्ना चिर आवागमन मिटदा नहीं। मेरा सतगुरु गरीब नवाज पातशाह होर इशारे करनगे, आखो सतनाम श्री। मेरे साहब नूं जदों सिद्धा ने पुछया, सतगुरु जी तुसीं मैनूं कृपा करके दसना करो कि जे तुसीं हरिद्वार गए हो ते पांडे तुहाडे चरणा उत्ते डिगे ने, ध्यान देना है, जित्ती नौ खंड पृथ्वी। बाबे ने कोई एक देश नहीं जितया, बाबे ने दो देश नहीं जिते। ए ते साडी बदकिस्मती आ कि धन गुरु नानक पातशाह दे चरणा ते चलण वाले प्रचारक मुक गए। धन गुरु नानक वर्ग वर्गे दरवेश प्रचारक नहीं इस कौम विच रहे। जे हरिद्वार गए ऐसे ज्ञान दे तीर मारे हरिद्वार दे पांडे पैरां ते डिग पए, जे जगन्नाथपुरी गए जगन्नाथपुरी वाले पैरां ते डिग पए, जे मक्के मदीने गए उथे मक्का मदीना गढ़ बगदाद नवाए के। बोलो गढ़ बगदाद आ नवाया ना, तुसी कहिंदे हो नवा दिता टेलीविजन दे उत्ते, रोज अखबारां च पढ़दे हो कि बगदाद नूं नवाता, मगर इहनूं नवाउण नूं किन्ना चिर लगा ते की वरत्या।
ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਤੋਪਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਟੈਂਕ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਟੈਂਕ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਤੋਪ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੜ ਬਗਦਾਦ ਨਵਾਏ ਕੇ ਫਿਰ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਸਭ ਨਵਾਇਆ। ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਵੀ ਨਵਾਇਆ, ਗੜ ਬਗਦਾਦ ਵੀ। ਬੀਬੀਓ ਬੱਚਿਆਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਸਭ ਨਵਾਇਆ, ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਨਵਾਇਆ, ਗੜ ਬਗਦਾਦ ਨਵਾਇਆ। ਆਖਰ ਸਿੱਧ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਕਿਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨਿਵਾਰੇ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਮਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿਵ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਲੇਵੇ ਬਾਲਾ, ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਕਲੀ ਮੈਂ ਹਮਰੇ ਪੰਥ ਕਰੇ ਉਜਿਆਲਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੋਗੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੰਨ ਪੜਵਾ ਕੇ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾ ਕੇ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਚੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕੰਨ ਪੱਟਾ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਯੋਗ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾ ਜਾਣ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ, ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਕੀ ਤੁਸ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਧੰਨ।

0: गए पिता सम तरला पाओ पिता समझावेंगे पिता समझावेंगे पिता
1: समझावेंगे पिता समझावेंगे।
0: धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज समझा इन्हां अपने सिखां नूं ए तेरी गोद विच आण के रोज बैंदे ही इन्हां नूं तपदियां सड़दियां नूं होर कोई जगह नहीं मैं होर थां नहीं जिस पे करूं बेनती रोज कहिंदे ही आउंदे भी तेरी गोद विच ही प्यो भी तेनू मानदे ही साहिब माता नूं साहिब कौर नूं मां भी मानदे ही मगर एक दूसरे दियां लत्तां खिंचदे ही एक दूसरे दे दुश्मन ही है तेरे सिख हे मेरे सतगुरु इस पंथ उत्ते बौड़ी कर हे मेरे गरीब नवाज पातशाह इस पंथ उत्ते तरस खा रहमत कर बौड़ी कर इस पंथ दी इन्हां विच आपस विच प्रेम बख्श कदी तू गुड़ती दे के कहा सी सच कहूं सुन ले हो सबे जिन प्रेम कियो सतगुरु ए उल्टे चले गई है नफरत कर दई एक दूसरे ना हे मेरे गरीब नवाज तुसी गुड़ती दिती सी जिन प्रेम कियो ए नफरत कर दई इन्हां नूं तरस कर रहम कर इन्हां दे पैरां तो लैके सिर तक पै कोड़ नूं अपनी नजरे अनायत नाल ठीक कर तरस करो महाराज इस पंथ दे उत्ते ए तेरी शरण विच आण के बाणी पढ़दे ने ना को वैरी ना ही बगाना ए झूठ मारदे ने तेरी शरण विच इन्हां ने सारे ही वैरी बनाए ने इन्हां ने सारिआं नूं बगाने समझिआ है हे सतगुरु ए उत्तों उत्तों कहिंदे हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई इन्हां दे अंदरला कोट ठीक करो ए जितना बाहरों सोहणे लगदे ने गुरु गोबिंद सिंह साहब अंदरों भी सोहणे बनाओ इन्हां नूं हे मेरे मालिक इन्हां दा इलाज करो मेरा वैद गुरु गोबिंदा हे मेरे मालिक वैद बन के इन्हां दे अंदरले कोड़ नूं ठीक करो पंथ नूं एक दूसरे नाल प्यार कराओ ए ते सारे संसार नूं गल विच लकड़ी लैके इन्हां कहना सी अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे तुसी ते अमृत छका के भाई कन्हैया जी ने वर्गे प्यारियां नूं कहा सी तू पास हो गया है तेनू कोई बगाना नहीं दिसदा हे सतगुरु असी एक संगत विच बह के एक थाल दा कड़ा प्रसाद छकन वाले एक लंगर दे विच पंगत विच बह के लंगर छकन वाले असी मन करके एक दूसरे तो बड़े दूर हो गई सतगुरु तरस खा साडे दे उत्ते मेरे सतगुरु कहन लगे मैं खिमा लै लिया ते मन परमेश्वर दे चरणा विच वेच दिता सिद्धो जिदन तो मैं खिमा लै लिया परमेश्वर कोलों जिदन तो मैं नीवा पन लै लिया परमेश्वर कोलों ते मन जड़ा खराब करदा सी वेच दिता है सतगुरु अगे उदन तो खरा खरा आके सब कोई बोलो खरा खरा फिर बोलो जी खरा खरा आके एक दो शब्द हुंदे ने एक खोटा ते एक खरा जिदे मन विच कोड़ होवे आपां कहिंदे मन दा औगण आरी कंत ना भावे मन की खोटी खोट कमावे मन दा खोटा बंदा खोट कमाउंदा है इत्थे गल्लां कुछ होर करदा है उत्थे कुछ होर करदा है ओ प्यारियो किथे तुर जाओगे किथे जाओगे केड़े साहिब दे अगे ओ साहिब दे अगे जाओगे जेड़ा साहिब सतगुर अंदरों निरवैर है सतगुर उस गुरु दे सामने पेश होना जाके जेड़ा अंदरों निरवैर आ उस गुरु दे सामने एक दिन जाके पेश होना है सतगुरु सबना दा भला मनाएदा बोलो सतगुरु उस गुरु दी शरण विच जाना है उस गुरु दे सामने जाना है केड़ा मुंह लेके जाओगे केड़ा कोड़ जाके विखाओगे मालक नूं अपने अंदर नूं शुद्ध करो तरला पाओ एक बार नक रगड़ो आण के गुरु दे अगे हे मेरे सतगुरु मेरे अंदर दी बीमारी ठीक करो मेरे साहिब कहिंदे जिदन तो मैं मन गुरु नूं दे के खिमा उहदे कोलों लै लिया उदन तो खरा खरा आके सब कोई जे मके गया वा ते अंदरों बाहरों एक सा ओ अखां वालियां नूं नजर आ गया उन्हां कहा खरा आ गया खरा आ गया वो पैरी पै गए जिन्हां नूं खरा ज्ञान सुनाया मके मदीने वालियां नूं सुनाया मके मदीने वाले काजी पैरां ते डिग पए गढ़ बगदाद वालियां नूं सुनाया गढ़ बगदाद नीवा हो गया मुल्तान विच गया मुल्तान वाले पैरी पै गए क्योंकि मन दे दिता सी ते खिमा गुरु कोलों लैके खरा हो गया सा खरा नानक पारख आप बोलो नानक पारख आप जिन खोटा खरा पछाणिया मेरे सतगुरु दे चरणा च बेनती करो मेरे साहब कहिंदे ने सिद्धो ए सारी करामात अमृत दी बनी ए अमृत करके मेरा मन इन्ना शुद्ध हो गया है खरा खरा आखे सब कोए खरा रतन जुग चारे होए खात पियंत मुए नहीं जानिया खांदिया पींदिया जिन्हां चिर मुंह दे स्वाद लाए सी उन्हां चिर ते मरन दा ही ना पता लगा उन्हां चिर ते मरन दी जाच ही ना आई ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੂਆ, ਬੋਲੋ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ, ਤੇ ਮਰ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਆ ਸਵੇਰੇ ਆਉਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਸ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋ ਸਭਨ ਕੀ ਰੇਣਕਾ ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ। ਇਤਨਾ ਬਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਜੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਆ, ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਤੋ।

बारक बारक मुख मांगे सो देना, बारक मुख मांगे सो। ए बन गया मेरा पुत, ते आज तो हुण जो मेरा पुत मुंह चो मंगे इनू देना है। ओ आर्डर करके मुड़िया, उन्हें कह दिता, गया कोल गल नाल फिर मत्था चुमया, गल नाल लाया ते आख्या, मैं कह दिता है दाता देने वाले नू, सचेत होके बैठो, मैं कह दिता है। आके गया ना कि बारक मुख मांगे सो देना, उन्हें आख्या पिता कृपाल आ गया है कीनी, बारक मुख मांगे सो देना। उन्हें ते एक गल कह के मुड़िया, ते पिछे बालक ने आख्या मेरी ते हुण भोखी कोई नहीं रहेगी, मैं मंगा की। नानक बारक दर्स प्रभ चाहे, हुण मुक गए ट्रैक्टर मंगने, मुक गईआं गड्डियां मंगणियां, मुक गईआं दुनिया दीआं दौलतां, हुण ते नानक बारक दर्स प्रभ चाहे। बोलो नानक बारक, हुण ते इहनूं पता लग गया असली दात की आ, देख जीवां गुर तेरा दर्शन।

एक बार भैनो बचियो तुसी भी पढ़ो, जदों कदे परवटे कटाउन कोई लगे, जदों कदे कोई कर्म कर लगे बची बच्चा, उदों सानू पता लग जाए अंतर जामी जान मेरा प्रभ

अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद जप आदि सच जोगादि सच खैपी सच नानक खुशी पी सच।

काम करनगियां, पर एक गल याद रखी, इस घर विच तां तेरे लाड करके तेनू कोई नहीं झिड़कदा, काम कर चाहे ना सिख, पर याद रख सहुरे घर कीमत उन्हां दी पैंदी है जिहड़ियां गुणा दा दाज अपने नाल लैके जांदियां। मैं बेनती करनी चाहना कि सतगुरु ने अमृत की दात क्यों दिती, गुरु के चरणा भी जान की लोड़ क्यों है। भाई साहब कहिंदे ने अपने घर विच मां लाड़ देखदी है, पिता लाड़ देखदा है, भरा लाड़ देखदे ने, रोटी पकाए ना, खाए ना, कड्डे परोए ना, तां वी उह लाड़ नाल सब कुछ जर लैंदे ने, पर कह लगे देखती है पेके घर विच लाड़ चलदे ने, सहुरे घर विच लाड नहीं, उत्थे केवल गुणा वालियां दी कदर पैंदी है। भाई साहब कहिंदे ने बंदिया असल विच इह संसार तेरा पेका घर है, मत समझी कि जेड़े भैण भरा अज नाल ने मरन तो बाद सहुरे घर इन्हां ने साडे नाल जाणा, जेड़े टकिया ते तू माण करी बैठा है, मत समझी इह टके भी तेरे नाल जाणे ने। हकीकत इह ही टके भैण भरा तां दूर दी गल, जेड़ा शरीर तू लैके आया है इस शरीर ने भी उस घर नूं नहीं जाना, आखिर जिस जिंद ने जाना है इस जिंद नाल जाण वाला ते कोई चाहीदा है ना। क्यों गुरु धारण किया जाता है, क्यों अमृत की दात लैनी है, ते अज मैं यत्न करना विशा रखे है गुरु पदवी, गुरु की जरूरत, ते सतगुरु ने किवें ये मर्यादा सानू बख्शी। साहब कहिंदे ने पेके घर कम कीमत लाड करके चल जाता है, सहुरे घर कदर गुणा नाल पैंदी है। इस संसार विच धंदियां नाल वाहवा वाहवा मिल जाएगी, पर जदों मालक दे घर जाना है उदों केवल यह पुछया जाता है कि तेरे कोल गुरु शब्द है, तेरे कोल गुरमंत्र है, तेरी जिंद दा सहारा गुरु तेरे नाल है। भाई साहब ने दूसरा बचन किया कहिंदे जिवें बच्ची सहुरे करके गुणा करके जानी जाती है, मनुख व्यापार करन जांदा है परदेश विच, दो पुत्र इकट्ठे तोरे ने अपने घरों एक मनुख ने, कहिंदे जिहड़ा पुत्र पूंजी नूं खर्च के कुछ अपने नाल कमा के लै आए उन्हूं लोग सपुत्र कह के सत्कार दिंदे ने, ते जिहड़ा बाप की पूंजी नूं भी तबाह करके आ जाए, हकीकत जे उस बंदे नूं कदी सत्कार नहीं जी मिलदा, उन्हूं कपुत्र कहा जांदा है। आखिर इस धरती ते आए हां, सवासां दी पूंजी मालक ने दित्ती है, ते मेरे धन गुरु नानक साहिब जी कहिंदे ने जे तां उस बापू दी पूंजी नूं लै के जिंदगी विच कुछ खर्च के कमाई करके नाम दे भंडारे भर के गयो ते बापू परेशान होवेगा, ते जे सवास भी तबाह करके आ गयो पल्ले भी कुछ ना होया, ते सजना जे पुत्र कमा के ना जाए ते मां बाप ओहदे नाल रोसा करदे ने, ते जदों तू दुनिया तो तुरेगा पल्ले कुछ ना होया ते मालक दी खुशी नहीं लै सकेगा। भाई साहब ने अगला वचन किया कहिंदे ने मैदानी जंग विच सारे उतरदे ने, हर बंदा उतरदा है, पर कहिंदे सूरमे ओह ने जेड़े जां तां सच ते शहीद हो जाण, ते जां फिर ओह सूरमे रण तत्ते विचों जित के आउण। कह लगे जितियां होयां नूं वधाई मिलदी है, हार के आए पिट दिखा के आए, सारी जिंदगी लोकी उहनां नूं शक नाल ते उहनां नूं कलंकित समझदे ने। भाई साहब कहिंदे ने पेका घारी सहुरे घर कदर गुणा करके पैणी है, चेते रखी व्यापार करन आया जे कुछ कमा के लियाऊं ते तां मालक दे घर विच थाई, ते जे पूंजी सवासां दी भी गवा के चला गयो ते उत्थे सजना कोई ढोई नहीं। तीजा बचन कीता इस संसार रण तत्ते विच आया है, जे तां वकारां नूं जित के चला जाए ते सजना तैनू संत सिपाही सूरमा कहणगे, ते जे वकारां विच जिंदगी तबाह करके चला गयो ते चेते रखी खारिया होया नूं कदी भी सत्कार नहीं मिलदा हुंदा। असल विच मनुखा देही दा कोई मकसद है केवल ता केवल जन्म तो बाद मौत तक दा सबर करना जिंदगी नहीं, उस सबर नूं किवें बतीत करना है ते साईं दे घर किवें जाना है, मनुखा देही दा असल विच प्रयोजन है। भाई साहिब भाई गुरदास दे बचन हुंदे ने कहन लगे नहर कवार कन्या लाडली कै मानियत, ब्याहे ससुरार जाए गुणन कै मानिए, बनज बिहार लग जात है विदेश प्राणी, कई है सपूत लाभ लब्ध कै आनिए, जैसे तो रण समय पर दल में अकेलो जाए, जीत आवे सोई सूरो सुपट बखानिए, अगली तो कभी ना भुल्यो क्यों अमृत।

नाम कर्ता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जोगादि सच नानक खुशी भी सच

वन कंड मूड वसी रब हयाली है जंगल क्या टूंडे फरीदा इन्नी निकी जंगी है थाल डूंगर पव्यों अज फरीद कुजड़ा सैकू हाथियों फरीदा इन्नी निकी जंगी है

खड़ा न आप मुहाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरबान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाप पवित्र गोद दा आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी जनों आप सरवण कर रहे से तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पावन बाणी दे खजाने विचों भगत फरीद साहब जी दे सलोक। भगत फरीद साहब जी दे सलोकां दी रोज सवेर दे वकत लड़ीवार कथा मैं आप संगतां दे सन्मुख पेट करन दा निमाणा यतन आरंभ कर रहा। कुछ बेनतियां भगत फरीद साहब जी दे जीवन संबंधी मैं आप संगतां दे सन्मुख रखदा चलां। लम्मा समा गजनी ते काबुल इन्हां दोवां दा आपसी झगड़ा चलदा रहा। कले कलेश वाद विवाद वैर विरोध लंबा समा चलदा रहा और एक घटना तकरीबन सन 1124-25 दे करीब दी है। बहुत जद रौला वध्या ते काबल दे रहन वाले वजी उद दीन काजी एक काबल विचों उठ के ते मुल्तान शहर दे अंदर अपने परिवार नू नाल लेके रहन वास्ते आ जांदे ने। ए जिहड़े काजी जिन्हां दा नाम वजी उद्दीन साहब है इन्हां दे कोल एक बेटी सी जिस बेटी दा नां सी मरियम। भगत फरीद साहब जी दे सलोकां दे संबंध विच तुसी बहुत वार पढ़िया सुनिया पर मैं कुछ बेनतियां उन्हां दे जीवन संबंधी तुहाडे सामने रखणियां चाहुंदा। इन्हां दे पास एक बेटी सी जिस दा नाम सी मरियम, बीबी मरियम करके इतिहास दे अंदर नाम प्रसिद्ध होया। ए बीबी मरियम हजरत मुहम्मद साहब जी दे सके चाचा हजरत अब्बास जी दे खानदान विचों सी। बीबी मरियम हजरत अब्बास साहब जी दे खानदान दे नाल संबंधित है। इस बीबी नूं इस बच्ची नूं काजी साहब ने गोद लेके पालिया पढ़ाया लिखाया ते जद ए मुल्तान आए ते नाल ही चलदी चलदी बीबी मरियम ही आई। बीबी मरियम जद जवान हुई इन्हां दा निकाह कीता गया ते निकाह कीता गया इन्हां दा जलालदीन साहब जी दे नाल। बीबी मरियम दा निकाह उन्हां दा व्याह जलालदीन साहब जी दे नाल कीता गया। इन्हां दे दोवां दे संजोग तों बीबी मरियम ते जलालदीन साहब इन्हां दे संजोग तों इन्हां दे घर दे अंदर पंज पुत्रां ने जन्म लिया है ते तीन पुत्रियां ने जन्म लिया है। तो खैर इस तरह बीबी मरियम इन्हां दे कुख विचों जन्म लैण वाले जिहड़े दूसरे पुत्र ने उन्हां दा नाम रख्या गया फरीद साहब। फरीद दा अखरी अर्थ है अदुती, अखरी अर्थ है लासानी। फरीद उहनूं कहिंदे ने जिहड़ी कोई चीज अदुती जिही होवे, हैरान करन वाली होवे, लासानी होवे उहनूं कह दिंदे ने फरीद। जिवें कबीर दा अखरी अर्थ है वड्डा, कबीर दा होर कोई अखरी अर्थ ने। पुराने समय दे अंदर बच्चे दे जन्म हुंदिया सार बच्चे दा नां तजवीज नहीं सी कीता जांदा, नाल लगदा बच्चे दा नाम नहीं सी रख्या जांदा। तकरीबन एक साल डेढ़ साल दो दो साल समा बीत जांदा सी ते तां उस बच्ची बच्चे नूं उहदे थोड़े जे कर्म उहदे लक्षण वेख के तां उहदे शरीर नूं कोई ना कोई नाम दिता जांदा सी। बीबी मरियम ते जलालदीन दे साहब इस दूसरे बच्चे दा जन्म होया 9 महीने बाद ही बाल दा जन्म ते तकरीबन 9 महीने बाद ही अगे जाके इन्हां नूं नाम मिलदा है मां बाप वालों फरीद। फरीद दा मतलब अदुती क्योंकि लक्षण बड़े अदुती सन।
ਹੁਣ ਹਰ ਬਿਰਵਾਨ ਕੇ ਚਿਕਨੇ ਚਿਕਨੇ ਪਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਹਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਦੁੱਤੀ ਬਣੇਗਾ ਮਹਾਨ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣ ਉਹਦਾ ਬਹਿਣਾ ਉੱਠਣਾ ਬੋਲਣਾ ਚੱਲਣਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮ ਧਰਮ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ 100% ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੰਗ ਮਿਲਦਾ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਰਮ ਬਦਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਾਬੇ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਸਰ ਆਇਆ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਹੱਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੁਲਤਾਨ ਕੁਛ ਧਾਰਮਿਕ ਤਾਲੀਮ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਖਰ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਵਾਜਾ ਕੁਤਬਦੀਨ ਬਖਤੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਖਵਾਜਾ ਕੁਤਬਦੀਨ ਬਖਤੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਤਬਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੁਤਬਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਉਚੇਚਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਜੀ ਕੁਤਬਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਗਿਰਦ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਗ ਯੁਗਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨੇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਇਆ ਹੈ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਚਲੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਟਿਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅੱਜ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਤੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 5 ਤੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਸਰੀਰ ਤੇ ਅੱਜ 5 ਤੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਨੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਨੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਾਜੀ ਕੁਤਬਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਾਜੀ ਕੁਤਬਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੇ ਚੋਟ ਖਾਧੀ ਮਨ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਇਹ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ ਵੈਰਾਗਮੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂਸੀ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹਾਂਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਾਂਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 15-18 ਸਾਲ ਹਾਂਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਹਾਂਸੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਿੰਟ ਗੁਮਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕਪਟਨ ਪਾਕਪਟਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 6 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਤੇ 2 ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਚੱਲਾਂ ਜਿੰਨਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੇਨਤੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ
तकरीबन भगत गृहस्थी ने, सारे गुरु साहिबान श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी नूं छड़ के गृहस्थी ने, जिन्हें भी उच्च क्वालिटी दे सर्व उच्चतम भगत होए सारे दे सारे इस गृहस्थ मार्ग दे विचों दी हो के गुजरे ने, और जिन्हें उन्होंने कोल उन्होंने शगिर्द बन के आंदे रहे उन्होंने उन्होंने गृहस्थ मार्ग धारण करन दा उपदेश भी दिता है। बाबा फरीद साहब जी दे घर दे अंदर 6 पुत्रां ने ते 2 पुत्रियां ने जन्म लिया है। पाक पटन तो चलदे चलदे एक बार बाबा फरीद साहब जी पहुंच जांदे ने एक शहर दे अंदर, जिस शहर दा नां है मोकल देव, और ये शहर अजकल पंजाब दे अंदर है। मैं आने वाले समय दे अंदर अर्ज करांगा मोकल देव। मोकल देव शहर नूं वसाया सी एक मोकल नाम दे राजे ने। मोकल नाम दा राजा सी, धर्मी राजा सी, न्यायकारी राजा सी। जो कोई गरीब गुरबा इस दे पास चल के आउंदा सी ये उन्हां दियां झोलियां भरदिया करदा सी, कदी अनाज दे नाल कपड़े दे नाल जो भी लोड होनी पूरी करिया करदा सी। मूल रूप विच कह लो कि मोकल नाम दा राजा धर्मी राजा सी। इन्हें एक नगर आबाद कीता ते नगर दा नाम रख दिता गया मोकल देव। चलदे चलदे बाबा फरीद साहब जी मोकल देव शहर दे अंदर नगर दे अंदर पहुंच जांदे ने। कुछ दिन मोकल देव नगर दे अंदर रहन तो बाद उथों दे लोग ते उथों दा राजा मोकल बाबा फरीद साहब जी दे जीवन तो, इन्हां दियां गल्लां बातां तो, इन्हां दियां कथा कहानियां तो बड़े मुतासर होए, बड़े प्रभावित होए। जद बाबा फरीद साहब उस नगर दे अंदर रहन तो बाद चलन दी तैयारी करदे ने, उथों दा हुक्मरान राजा मोकल बाबा फरीद साहब जी दे सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। कहन लगा, साई जी मैं तुहाडे चरणा दे अंदर एक भेटा रखनी चाहुंदा। फरीद साहब पुछदे ने कि भेटा दी मैनूं लोड़ नहीं है, और ना मैं तुहाडे कोल कुछ लैण वास्ते आया ही हां। जो लैण वास्ते किसी गर्ज वास्ते आउंदा है सही रूप दे अंदर ओह साई नहीं, मैं ते रब दा संदेश तुहाडी झोली दे अंदर पाउण वास्ते आया, ते मैं तुहाडा शुक्र गुजार हां तुसीं रब जी दीआं गल्लां बातां रब जी दीआं कथा कहानियां मेरे कोलों कुछ दिन लगातार सुनिया ने, इस गल्लों मैं तुहाडा धन्नवादी हां। फिर भी ओह मोकल राजा कहन लगा, मैं तुहाडे चरणां विच इक भेट ते करनी चाहुंदा। फरीद साहब पुछदे ने कि की भेट रखनी चाहुंदा है। इह कहिंदा है जी, इह जिहड़ा शहर, इह शहर दा नां है मोकल देव, इह नाम मेरे नां दे उत्ते टिकिआ है, ते अज मैं चाहुंदा कि इस शहर दा नाम बदल के तुहाडे नां दे उत्ते रख दिता जाए। मोकल नाम दे राजे ने उस शहर दा नाम बदल के रख दिता फरीदकोट। फरीदकोट शहर अज पंजाब दे अंदर है और जिला है, वड्डा शहर है, उहदा नां रख दिता फरीदकोट, ते रखिया बाबा फरीद साहब जी तो प्रभावित होके। फरीद साहब रब जी दे राह दे उत्ते चलदे ने, और रब जी दे राह दे उत्ते चलदिआं चलदिआं कुछ ज्ञान पैदा हुंदा है। कोई भी चलन वाला होवे, कोई जात, कोई मजहब, कोई कौम, कोई बरादरी, कोई भाईचारे दा वितकरा नहीं है, कोई भी चलदा है उसनू रब्बी ज्ञान अंदरों मिलना शुरू हुंदा। उस रब्बी ज्ञान नू कई ते अपनी मस्ती दे आलम दे अंदर छुपा लैंदे ने, बोलदे कुछ नहीं है, खामोश हो जांदे ने, पर कई उस ज्ञान नू अपने अंदर पैदा हुए ज्ञान नू अल्फाजां दा रूप दे के लोकां दी झोली दे अंदर पाई जांदे ने, लोकां दे नाल उस ज्ञान नू सांझा करी जांदे ने। यही कारण है गुरु साहिबाना ने साडे सामने साडी झोली दे अंदर अपने पावन कलाम, पावन बाणी साडी झोली दे अंदर पाई, जिसका नाम गुरु बाणी बन गया। फरीद साहब अरबी दे ते फारसी दे बड़े विद्वान ने बाबा फरीद साहब, पर पंजाब दे अंदर रहन वाले सन, मिंट गुमरी दे अंदर रहन वाले सन, मुल्तान दे अंदर वड्डे होए, जमे पले, इस करके इन्हां ने पंजाबी भाषा दे अंदर अपनी बाणी नू रचिया। पंजाबी भाषा दे अंदर, ठेठ पंजाबी दे अंदर इन्हां ने अपने अंदर दे ज्ञान नू श्लोकां दे रूप दे अंदर साडे सामने रखिया। अज जदों बाबा कबीर साहब ते भगत फरीद साहब जी दे श्लोक भोग तो पहला आउंदे ने, ते तकरीबन लोग बड़े प्यार दे नाल इन्हां श्लोकां नू सुणदे ने, झूमदे होए वेखे जांदे ने कि भगत फरीद साहब जी दे श्लोक आए। बाकी कोई बाणी सुनो ना सुनो, चलो हुण ते जाके फरीद साहब जी दी बाणी नू सुन लई,
पर जिस बाणी नू इतने प्यार मगन होके आप सुन दे हो उस बाणी दे अर्थ भेद समझ विच आ जान के फरीद साहब कहिंदे की ने सलोक सुनंदा भी आनंद वाधू बन जाएगा ते नाल फिर सानू समझ आ जाएगी कह की रहे ने उन्हां सलोकां दे नेम नुकते असी अपने जीवन दे अंदर फिर अपनाउणा भी शुरू कर देंगे। मैं भगत फरीद साहब जी दे सलोकां नू आधार बना के लड़ी वार व्याख्या रोज सवेर दे वकत आप संगतां दे सन्मुख भेट करन दा निमाना यतन कर रहा। भगत फरीद साहब जी दे सलोकां दी कथा प्रारंभ करिए सुनिए। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी रहमत करन। सलोकां दे आरंभ दे अंदर गुरु अर्जन देव पातशाह ने एक मंगला चरण बख्शिया है। बाणी नू जिहड़ी तरतीब दित्ती गुरु अर्जन देव साहब जी ने दी ते गुरु अर्जन देव साहब जी ने इस श्लोक लिखन तो पहला इहदे उत्ते एक मंगला चरण दिता है। वह मंगला चरण है एक ओंकार सतगुर प्रसाद। यह मंगला चरण इस रूप के अंदर जिहड़ा मंगला चरण आया गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर वह 523 वार आता है। जिहड़ा एक ओंकार तो लैके गुर प्रसाद तक मंगला चरण आता है वह गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी के अंदर तकरीबन 33 वार आता है। तो खैर यह मंगला चरण इन्हों सलोकों के आरंभ के अंदर है। एक बेनती मैं होर भी आप संगतां दे ज्ञात वास्ते करदा चला। गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी का प्रकाश हुंदा है वह प्रगट हुंदे ने दुनिया के अंदर 1469 के अंदर। बाबा फरीद साहब जी का जन्म हुंदा है उन्हां दा प्रकाश हुंदा है 1173 के अंदर। कह लिए कि तकरीबन 200 साल पहला गुरु नानक साहब जी तो बाबा फरीद साहब जी हो चुके हैं। तकरीबन 200 साल पहला तीसरी उदासी दे समय गुरु नानक साहब जी चलदे चलदे पहुंचदे ने पाक पतन। बाबा फरीद साहब जी दी गद्दी दे उते 11वें थां दे उते जेडे उस वक्त शख्स सुभाए मान ने उन्हां जी दा उन्हां दा नाम है शेख ब्रह्म साहब। शेख ब्रह्म जी कोलों भगत फरीद साहब जी की यह बाणी गुरु नानक पातशाह महाराज जी नूं मिली। भगत फरीद साहब जी दे इह सलोक गिणती दे अंदर 112 ने। इन्हां सलोकां दे अंदर 18 सलोक गुरु साहिबानां दे ने विच मिला के जो लिखे गए इस तरह इन्हां सलोकां दी टोटल गिणती बन जांदी 130 पर भगत फरीद साहब जी दे सलोक ने केवल 112 और इन्हां सलोकां तो बगैर गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर 4 शब्द बाबा फरीद साहब जी दे होर मिलदे ने। अज पहला श्लोक जो मैं आप संगतां दे सन्मुख पढ़िया दोबारा इस श्लोक नूं आरंभ करां। जित दिहाड़े धन वरी साहे लै लिखाए। कहन लगे जिस दिन इन्हें वरी जाना है धन मैंने जीव इस्त्री। एक धन लफज गुरबाणी के अंदर इस तरह का लफज आंदा है जिदे बड़े अर्थ गुरबाणी के अंदर आए। मैं वनगी मात्र उदाहरण वजो गुरबाणी के 2-4 बचन आप संगतां दे सन्मुख रखदा चला। तिचर वसे सुहेलड़ी जिचर साथी नाल जा साथी उठी चलिया तां तन खाकूराल। हुण इन्हां पंक्तियां दे अंदर तन लफज आया पर इत्थे तन दा मतलब है शरीर तां तन खाकूराल। जितना समा परमात्मा दी अंश आत्मा साडे अंदर वस रही है उतना समा तू हस रहा है नच रहा है गा रहा है कमा रहा है रह रहा है। ते जिस दिन आत्मा उड़ारी भर जाएगी उस दिन ये तन खाक बन जाएगा खाक दे नाल मिल जाएगा। इन्हां पंक्तियां दे अंदर तन दा अर्थ आया देही तन दा अर्थ आया शरीर तन तन ओ राम बेन बाजे। इत्थे तन दा मतलब है तनता दे योग जिवें असीं कह दिंदे आ तन तन श्री गुरु नानक देव साहब जी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी। इत्थे धन दा मतलब है वड़ियाई दा लखायक वड़ियाई वास्ते महानता वास्ते ए लफज तन वरतों विच आया। इस तों अगे होर चलो गुरबाणी दे अंदर एक बचन आउंदा है कि तन पेर एह ना आखियां बैन इकट्ठे होए एक जोत दोए मूर्ति तन पेर कही है सोए। इत्थे गुरबाणी दे अंदर तन दा अखरी अर्थ बन जांदा है जीव इस्त्री कामने तन पिर ए ना आखिया पिर मैंने पति तन मैंने इस्त्री।
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਜੋ ਸਰੀਰਾਂ ਕਰਕੇ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ ਧਨ ਪਿਰ ਕਹੀਐ ਸੋਇ। ਤੇ ਧਨ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਫਿਰ ਬਦਲ ਗਏ ਨਾ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਧਨ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਤ ਦਿਹਾੜੈ ਧਨ ਵਰੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਨੇ ਵਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਆਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਹੇ ਲੈ ਲਿਖਾਏ, ਉਹ ਸਾਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹਿ ਕੇ ਦਿਨ ਨੀਯਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹੀ ਤਜਵੀਜ਼, ਇਹੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ, ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਦਿਨ ਮਿਥ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਦਿਨ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਹੂਰਤ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਮੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫਕ ਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਵਹਿਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਇਆ ਬੜਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਇਜ਼ਮ ਦੇ ਵਹਿਮ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਚਿੱਕੜ ਤੇ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਰਹੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਡਤਾਂ ਪਾਂਧਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਡੁੱਬੋ। ਤੋ ਖੈਰ, ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਿਹਾੜੈ ਧਨਵਰੀ ਸਾਹੇ ਲੈ ਲਿਖਾਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੌਤ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹ ਉਹ ਦਿਨ ਨੀਯਤ ਹੈ, ਮੁਕਰਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਨਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਨੀਯਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਬੰਬ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਰਿਆ ਸੀ, ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਬੰਬ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬੰਬ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਮੁਕਰਰ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਨੀਯਤ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਨੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅਗਰ ਮੌਤ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਪਰੋਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ। ਮੌਤ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੌਤ ਦਾ ਬੰਬ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪਤਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਉਸ ਮੌਤ ਦੇ ਬੰਬ ਨੇ ਬਲਾਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲਾਸਟ ਹੋਣਾ, ਬੰਬ ਫਟ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਮੁਕਰਰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਤ ਦਿਹਾੜੈ ਤਨਵਰੀ ਸਾਹੇ ਲੈ ਲਿਖਾਏ, ਮਲਕ ਜੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀਦਾ। ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਲਕ। ਤੇ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜੋ ਤਾਕਤਵਰ ਮੌਤ ਦਾ ਮਲਕ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਗਈ, ਫਲਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਬੀਤ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵਾਪਰਦੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਮੌਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੌਤ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਆ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਪੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਣ ਕੇ ਤੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਮਰਗਟ ਜਿਹਨੂੰ ਮੜੀਆਂ ਕਹੀਦਾ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ, ਉਹ ਵਸੋਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਵਸੋਂ ਤੋਂ ਦੁਰੇਡੇ ਬਣਾਏ ਨੇ।
ताकि मौत सानू आउंदिया जांदिया नजर ना पै। एक पासे नवेकले दुरेडे थां दे उत्ते शमशान भूमि नू बना दिता, पर कौन दसे कि मौत इस तरह की बलवान है जो हर घर का दरवाजा खड़का के उन्हें मरगट बनन दे उत्ते मजबूर कर देंदी है, उन्हें शमशान भूमि बना के रख देंदी है। कोई भी घर इस तरह का नहीं है जो मौत के फरिश्ते तो बचा हो, मौत के ताकतवर इस फरिश्ते तो अपना आपा बचा पाया हो। जाओगे भी कित्थे भज के, जिथे भी जाओगे मौत तुहाडे नाल है, तुहाडे अंदरों पैदा होनी है। कहन लगे मलक जे कन्नी सुनी दा, अज दूजियां दे बारे सुनिया फलाने नू मौत आई, अपने बारे मनुख विश्वास नहीं करदा, एक मैरिज होर करदा चला। तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पवित्र बाणी दे अंदर विशा एक नहीं है, हजारां विशयां दे उत्ते गुरबाणी दी चर्चा है। गुरु साहिबाना दे भगत जना दे बचन ने औगुणा दे संबंध विच, गुणा दे संबंध विच, जिन्निया बुराईयां ने उन्हां बुराईयां नू नचिजक गुरु ग्रंथ साहिब जी ने चर्चा दे अंदर लियांदा है, जिन्ने गुण ने उन्हां गुणां दी भी चर्चा कीती। इस तरह चर्चा करदियां करदियां अगर गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच्चों मूल रूप विच दो टॉपिक लभीए कि केड़े ने, ते फिर यही बचदा है कि हर पंक्ति दे अंदर, हर शब्द दे अंदर गुरु बाणी ने सानू परमात्मा नू चेते करन वास्ते हुक्म लाया है, फरमाया है परमात्मा नू अपने चेते दे अंदर लियाउण दा यतन कर, वसाउण दा यतन कर, परमात्मा दे नाल जुड़, परमात्मा दी बंदगी कर, उहदे गुणां नू अपना। शब्द शब्द दे अंदर, पंक्ति पंक्ति दे अंदर सानू इह उपदेश मिलदा है। दूसरा, बहुती बाणी दे अंदर सानू साडा अंतला पल चेते कराया गया, साडा मौत वाला पल चेते कराया गया। मैं भगत फरीद साहब जी दे सलोकां नू प्रारंभ कीता है, प्रारंभ दे अंदर ही भगत फरीद साहब मौत चेते करवा रहे। जिस नू मौत चेते विच आ जाए कि मैनू मरना पैना है, वह बंदा गुनाहां तों बाज आ जांदा है, ते वह बंदा गुरु दी शरण विच आ जांदा है। सतगुरु जद मैं मरना ही है, मैनू जाना ही पैना है, ते फिर मैं अपने जीवन नू विगाड़ा क्यों, अपने सिर दे उते पाप अपराध दी पंड बन के रखा क्यों, जद मरना ही है। ते फिर ये भी नहीं पता कि मौत दा डंका वज कदों जाना है, ये ते जरूरी नहीं कि 90 साल बाद ही मौत ने आउणा है, या 100 साल बाद मौत वाली घटना घटेगी, पता नहीं मौत दा डंका कदों वज जाना। हजूर दा फरमान ते इस तरह भी है कि हरी नाही नह डडरी पक्की वडन हार, उदी मर्जी बालपन विच लेके चला जाए, उदी मर्जी है वह जवानी दे दौर विच मौत नू भेज देवे, उदी मर्जी है वह बुढ़ापे तो बाद ले जावे, मर्जी ते परमात्मा दी, अपने ते वस विच नहीं। और ना ही अजे तक कोई मौत नू रोक पाया, ते ना ही मौत नू कोई रोक पाएगा। खैर, जो मैं बेनती कर रहा सा कि मौत दे संबंध विच गुरु बाणी दे अंदर वार वार जिक्र आया, जिसनू मौत ध्यान विच आ जाए, मौत चेते विच आ जाए, वो पापा अपराधा तो बच के गुरु दी शरण विच आ जांदा है अपने जीवन दे सुधार हित। ते जे पहला गुरु चेते विच आ जान, मौत बाद विच चेते आवे, ते फिर गुरु चुके इनू मौत चेते करवा देंदे ने कि

0: राजी नहीं, जीवन सारी लोड देने, मर के कोई भी राजी नहीं है। किसे अखीर ते पहुंचे हुए मनुख नु प्रश्न करके वेखो, यही कहेगा कि जान दी अजे तमन्ना नहीं है, अजे जीवन चाहिदा है ते होर जीवन चाहिदा। भावे शरीर दा बेड़ा जर्जरा कमजोर पुराना हो जाए, इदे अंग अंग दे अंदर रोग होन, अखां दर्द, नक दर्द, कन्ना तो सुने ना, लत्तां तो चलिया ना जाए, बावा कुछ करन दी समर्था ना रखन, ना बोलिया जाए, ना वेख्या जाए, पर तमन्ना बाकी है। भाई साहब भाई गुरदास साहब जी ने एक बचन होर भी कहा है, वो कहिंदे ने अन्ना बोला पिंगला, तन थका मन दह दिस तावै, मन अजे दौड़दा है, मन शरीर नूं छड्डन वास्ते तैयार नहीं है। पर परमात्मा दी नेत दे मुताबक भावें असीं राजी हां या नहीं राजी, जदों मौत आ जांदी है शरीर छड्डना ही पैंदा है, भावें हस के छड्ड दईए, रो के छड्ड दईए, शरीर छड्डना ही पैंदा है। मैं एक वक्त 2001 दी घटना नूं बयान कर रहा, मैं महीने को वास्ते आया सां गलीड़ा रोड दे उते। एक बजुर्ग माता मेरे कोल आई, उन्हें एक छोटा जिहा बच्चा अपनी उंगली दे नाल लाया, तकरीबन 5-7 साल दी बच्चे दी उम्र होनी है। मैनूं ओह घटना बड़ी चंगी तरह याद है। ओह माता मेरे कोल आई, ज्ञानी जी अरदास करवाउणी है ते करवाउणी वी तुहाडे कोलों है। मैं कहा माता मैं अरदास करदा नहीं हां, मेरी जिम्मेवारी भी नहीं है, ग्रंथी सिंघां नूं संपर्क विच लो, अरदास करवाउणी वी तुहाडे कोलों। पुछिया मां अरदास की, कहन लगी इह मेरा पड़पोत्र है, पोतरे दा भी पुत्तर इह पड़पोत्र है, अरदास करो कि मैं इस पड़पोतरे दा विआह वेख के ते फिर मरां। मैं क्या माता ये अरदास ते होनी नहीं, अपना विआह वेख्या तां मन नहीं भरिया, सखियां सहेलियां दा विआह वेख्या तां मन नहीं भरिया, धीआं पुत्तरां दा विआह वेख्या तां मन नहीं भरिया, पोतरियां पोतरियां दा विआह वेख्या तां मन नहीं भरिया। एक पड़पोतरे दा विआह वेखण तों बाद तमन्ना ने रुकना नहीं है, वासना ने रुकना नहीं है, जीवन दी लालसा है, मरन वास्ते कोई राजी नहीं हुंदा। 95 साल दी आरजा हो जाए ते बंदा 95 साल दे अंदर भी जन्मदिन दी अरदास करांदा है। 95 साल पहला घटना घटी सी जन्म वाली, 95 साल पहला, ओ 95 साल पहला जेड़ी घटना घटी सी ओ दिन ते चेते करदा है, जन्मदिन दी अरदास करांदा है, जन्मदिन मनांदा है, हालांकि ओ 90-100 साल पहला दी घटना है। मौत का भरोसा ही नहीं है, 95 मिनटा बाद आ जाए, सकेंटा बाद आ जाए, हुणे आ जाए, पल बाद आ जाए, पर मौत का ना कन्ना दे अंदर पैंदियां सार अंदरों हिल जांदा है, कंब जांदा है, नहीं नहीं नहीं अजे ते जीवन दी तमन्ना है, अजे मैं मरना नहीं चाहुंदा। तो भगत फरीद साहब जी कहन लगे, जो ताकतवर देवता है मौत का, ये जद आ जांदा है ते फिर ये गले नूं दबा देंदा है, सवासां दी माला बिखर जांदी है, इनू नाल चलना पैंदा। इस तो अगे बाकी दे बचे स्लोक इदी व्याख्या आउन वाले कल नू मैं
1: लंगन देहु प्रभ कर तो उदर गोपाल मोह निर्गुण मत थोरिया तू सद ही दीन दया जो आवत शरण ठाकुर प्रभ तुमरी किसे राखो हो कृपा तार जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो राखो हो लाज मुरार वाहे गुरु साहिब जीओ जित दिहाड़े तन बरी साहे लय लिखाए मलक जे कन्नी सुनींदा मोह दिखाले आए जिंद निमानी कढ़िया

किजना बूझै किजना सूझै दुनिया गुजी पाहे साई मेरा चंगा कीता नहीं ता हम भी दजा आहे साई मेरे चंगा कीता नहीं ता हम भी दजा आहे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरवान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाक पवित्र गोद दा आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी श्रोते जनो आप सरवण कर रहे सी भगत फरीद साहब जी दी बाणी विचों उन्हां दे मुबारक हिरदे विचों उठे हुए वलवले और उन्हां दी मुबारक रसना दे कहे हुए बचन। भगत फरीद साहब जी दी बाणी नूं बहुत ध्यान दे के पढ़िए विचारीए ते भगत फरीद साहब जी ने अपनी रसना दे नाल जो बचन कहे उन्हां बचना दे अंदर दुनिया दे बहुत सारे विषयां नूं छोण दा यतन कीता। कदी किसे सलोक दे अंदर मौत दा जिक्र किसे सलोक दे अंदर जीवन दा जिक्र किसे सलोक दे अंदर गुनाहां दा जिक्र किसे सलोक दे अंदर गुणां दी गल किसे सलोक दे अंदर पखंडवाद दी चर्चा किसे सलोक दे अंदर परमात्मा हृदय दे अंदर है इस गल दी चर्चा। भगत फरीद साहब जी ने बहु पक्षी जीवन नूं बहु पक्खां दे नाल वेख के सुधारन दा यतन कीता है। जिस भी पक्ष तो भगत जी नूं कोई कमी पेशी आम दुनिया दे जीवन दे अंदर नजर आई रड़कदी दिसी उसे ही एंगल तो तमाम भगतां ने अपनी अपनी बाणी दे जरिए गुरु साहिबाना ने अपनी बाणी दे जरिए मनुखता दी झोली दे अंदर उच्चा ते सुच्चा ज्ञान पा के मनुखता नूं नवाजिया। अज दे इस महावाक दे अंदर भगत फरीद साहब जी दा उपदेश कहन लगे फरीदा दर दर वेशी गाखड़ी। दरवेश दा अखरी अर्थ हुंदा है रब दे दर दे उत्ते खड़ा होके मंग करन वाला रब दा मंगता रब दा जाचक दरवेश दा अखरी अर्थ ए हुंदा है। पर आम किसे दूसरे दरवाजे ते नहीं किसे बादशाह दे दरवाजे ते नहीं जो परमात्मा दे दर ते खड़ा होवे

इच्छा रहे आ दूर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग, मेहरबान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पवित्र अते निघी गोदा आनंद मान रहे सब माई भाई सतसंगी जनों, मन बिरतियां एकागर करके गुरु दरबार विच बैन अते सुनन दी किरपालता करियो। एक नुकता हमेशा ध्यान दे अंदर रखन योग है, एक वक्त दे अंदर एक कम करन दी अपने आप नू आदत पाओ। ऐस वक्त तुसी ना ते दुकान उते हो, ना ऑफिस दे अंदर हो, ना अपनी कोई होर किरत विरत काम धंधा ही कर रहे हो। शरीर करके इस वक्त कोई होर काम धंधा करना भी चाहो ते कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि शरीर ते गुरु दरबार विच है। तो फिर जे शरीर गुरु दरबार विच है ते फिर इस तरह का सुभा बनाओ कि उन्ना समा मन भी गुरु दरबार विच ही रहे। इस वक्त अगर मन करके तुसी ऑफिस वे चले गए, दुकान ते चले गए, किरत विरत वे चले गए, वो भी नहीं होएगी ते जो इथे हो रहा है वो भी पल्ले नहीं पाएगा, उहदा भी लाभ पूरा पूरा नहीं मिलेगा। जितना समा गुरु दरबार दे अंदर तन हाजर रहे यतन करना चाहिदा है, उन्ना समा नाल लगदा मन नूं भी बिठाउंदा। कोई काम बिगड़दा होवे उठ के जा सकदे आ, तन करके भी चलो, मन करके भी उथे रहिए, पर जिन्ना समा इथे हां इथे ही रहने की कृपा करियो। चल रही लड़ी वार कथा विचार भगत फरीद साहब जी दे सलोकां विचों आप रोज सवेर दे वक्त सुनदे आ रहे हो। अज जो दो सलोक बाबा फरीद साहब जी दे आप संगतां दे सन्मुख पढ़े गए, पहला श्लोक है फरीदा जां तो खट्टन वेल तां तू रत्ता दुनी सिओ। कहन लगे जेड़ा खट्टी खट्टन दा वेला सी, खट्टन मैने कमाउन, वेल मैने वकत, जेड़ा खट्टी खट्टन दा वकत सी, लाभ कमाउन दा वकत सी, तां तू रत्ता दुनी सिओ, उस वकत ते तू इधर ध्यान ना दिता ते दुनियादारी दे धंधे दे अंदर उलझिया रहा। कहन लगे ध्यान ना दिता। एक बेनती मैं होर भी करा, उम्र दे तकाजे दे नाल हर काम करन दा अपना अपना साडे समाज दे अंदर विहार प्यार बनिया है। उम्र दे तकाजे दे नाल बचपन दे अंदर साडी जिम्मेवारी स्कूल दे अंदर जाके चार अखरां दी तालीम लैनी है ते बच्चा स्कूल दे अंदर चला जांदा है। जवानी दे अंदर किरत विरत धंधा करना,

मिठिया रब ना पूजन तुद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरबान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाक पवित्र गोद का आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी जनों, आप चल रही लड़ीवार कथा भगत फरीद साहब जी दे श्लोकां विचों सरवण करदे आ रहे हो। मन बिरतियां एकाग्र करो, इस श्लोक नूं आधार बना के कुछ समझन ते समझाउण दा यतन करिए। फरीद साहब जी दा फरमान फरीदा मैं भुलावा पगदा मत मैली होए जाए। कहन लगे मनुख इस परम विच ते रहिंदा है कि बाहरों मेरे सिर दे उत्ते बजी हुई पग मैली ना होए। हकीकत है कि मनुख नूं जितनी खबर बाहर दी है उना ही अंदर दी तरफों अनजान है। बाहर दे बारे समझ आ गई है, अंदर दे बारे समझ नहीं आई। अगर आई है ते बहुत थोड़ी आई है। यही कारण है जिन्ना साफ सफाई का ध्यान बाहर है उन्नी सफाई का ध्यान अंदर नहीं है। तन साफ होना चाहिए सब की तमन्ना है, मन साफ होना चाहिए किसी विरले विरले की लोचा है, सब की तमन्ना यह नहीं है। उस तो बाद तन दे कपड़े घर बार मोटर कार हर जगह जो शरीर दे बैन उठन दे कम आउंदी है वो साफ सुथरी चाहीदी है। इत्ते सब नूं पता है, पर जिथे दीन दयाल निरंकार नूं वसदा रसदा वेखना चाहुंदे आ मन साफ चाहीदा है। इह किसे विरले विरले नूं पता है, सब नूं नहीं पता। तो इस तरह कह लिए कि लोग बाहर मुखी जीवन गुजार रहे ने, अंतर मुखी जीवन नहीं गुजार रहे। जब भी कोई रब जी दे राह दे उते अपने कदम रख के चलना शुरू करता है उदा ध्यान बाहरों हट के अपने अंदर वल जाना शुरू होता है। तो जब ध्यान अंतर मुखी होता है समझ आउंदी है अंदर बहुत कूड़ा करकट मैल ही मैल पई है, तो अपनी मैल नूं वेख के बंदा आप ही बेचैन हो जांदा है कि इतनी सारी मैल। अपनी मैल नूं वेख के अपने आप तो आप ही नफरत कर बैठदा है, इतनी सारी मैल ते ओ भी मेरे अंदर। मैं ते समझदा सा नहीं है पर बहुत ज्यादी है, बहुत ज्यादी। तो खैर ईसाई जगत दे अंदर ईसाई जगत दे बानी हजरत ईशा जी उन्होंने रब तो बाद नंबर दो दे उते सफाई नूं ही दर्जा दिता है। हजरत ईशा जी क्या करदे सन कि परमात्मा तो बाद अगर कोई साडा करना कर्म धर्म फर्ज बनदा है तो ओ ए है कि बाहर भी सफाई होवे ते अंदर भी सफाई होवे। चलो अंदर दी सफाई दे संबंध विच हर पैगंबर ने अवतारी तेरे परी पुरश ने जोरदार बचना विच किया है कि मन पवित्र चाहिए साफ चाहिए। पर हजरत ईशा दी बाहर दी सफाई दे उते भी बड़ा जोर देंदे ने ते अंदर दी सफाई दे उते भी बड़ा जोर देंदे ने। जद तो मनुख ने होश संभाली है उदों तो लैके मैल अपने बाहर भी वेखदा आ रहा है ते मैल अपने अंदर भी वेखदा आ रहा है। ते फिर बाहर दी मैल दे संबंध विच इहदी कोई जानकारी है, इहनू कुछ ज्ञान है ते बाहर दी मैल नूं धोण दे इह साधन लभदा रहा, साधना दी खोजबीन करदा रहा ते बाहर दी मैल नूं हटाउण दा यतन भी करदा रहा। ओ मैल चाहे तन दे उत्ते या फिर तन दे उत्ते पए होए कपड़िया दे उत्ते उस मैल नूं धोण दे साधन जुटाउंदा रहा, साधन लभदा रहा।
मैल हटाना इहदा लक्ष्य है। साधन बदलते रहे ने, हुण भी बदल रहे ने, बदलते रहेंगे। साधन दे नाल फर्क नहीं पैंदा। गल ते इह है कि अंदर मैल ना रहे, कपड़े दे उत्ते मैल ना रहे। एक बेनती मैं भी करदा चला, बाहर दी मैल जो साडे शरीर जां शरीर ते पाए हुए कपड़िया दे उत्ते या सज्जे खब्बे मैल दिसदी है, एक गर्दो गुबार मिट्टी घटे दे कारण है। बाहर दी मैल गर्दो गुबार मिट्टी दे कारण है, ते अंदर दी मैल बुरा वेखना, बुरा बोलना, बुरा सुनना, बुरा सोचना इस दे कारण है। जो अंदर मैल बनती है ओ बुरा वेखन बोलन सोचन करके बनती है। जो बार मैल बनती है वो मिट्टी कट्टा हनेरी तूफान गर्दो गुबार इहदे कारण मैल बनती है। बार दी मैल अंदर नहीं जाती है, और अंदर दी मैल ये साडे इंद्रियां दे राही बदल बदल के बार आउंदी रहिंदी है। तन गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी की पवित्र बाणी है, कहन लगे भरिय हथ पैर तन देहे पानी तोते उतरस के है। ये बाहर दी मैल है। अगर हथ पैर भर जांदे ने तो पानी नू वरतों विच लै आओ मैल उतर जाएगी, साबण नू वरतों विच लै आओ मैल उतर जाएगी। भरिय हथ पैर तन देहे पानी तोते पानी दे नाल तो लो उतरस के है, लगी हुई मैल उतर जाएगी चली जाएगी। मूत पलीती कपड़ होए देसा गोन लई है ओ तोए, अगर कपड़े भी किधरे चिकड़ लवरेज हो गए ने ते कह लगे साबुन दी वरतों करन दे नाल ओ भी उजले हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। पर किसी ने प्रश्न किया, साहब जी अंदर दी मैल नू धोण वास्ते केड़ी सरफ ते केड़ा साबण ते केड़ा पानी वरतों विच लियाई, मैल अंदर चली जाए ते अंदर दी मैल नू बाहर कढ़ना होवे धोना होवे तो फिर प्रश्न साडा ए धुपेगी किवें। हजूर कहिंदे ने कि परिये मत पापा कै संग उह धोपै नावें कै रंग। गुरबाणी दे अंदर लफज जिहड़ा आया ना उह पाप आया है, अपराध नहीं आया। इस जगह दे उत्ते इस तरह नहीं है कि अपराध लफज आया नहीं है, पर इस जगह दे उत्ते कहन लगे परिये मत पापा कै संग, क्योंकि पाप बीज है ते अपराध उस बीज तो वधन फुलन वाला दिसन वाला बूटा है। पाप जड़ है ते उस पाप दी जड़ दे सहारे दे उत्ते जिहड़ा पनपन वाला है वह अपराध नाम का बूटा है। इस तरह कह लो पाप अंदर हुंदा है ते अपराध बाहर हुंदा है, भावे दोवें गुना दोवें दोष दोवें तरह की मैल है, पर पाप मन दे नाल संबंध रखता है ते अपराध तन दे नाल संबंध रखता है। जो तुहाडे अंदर माड़ी सोच चल रही है, बुरी सोच चल रही है, कामुक सोच, क्रोध, निंदा, चुगली, ईर्षा, तरह तरह दियां बुरियां विचारां जो चल रही ने, उहदा नाम पाप है। उस पाप तो अगे आण के जिहड़े बुरे कर्म करने असीं शुरू कर दिंदे आ उहदा नाम अपराध है। अपराध नूं डर हुंदा है हथ कड़ी दा, कानून दा, समाज दा, पर पाप नूं ते भी डर नहीं है, क्योंकि पाप तां किसी दी निगाह जांदी नहीं है। पाप ते किधरे मंदिर मस्जिद दे अंदर बह के भी कीता जा सकदा है। खिमा चाहांगा की सोच रहे हो तुसीं इस वक्त मन दे अंदर, कोई दूसरा ते नहीं जानदा। बिल्कुल तुहाडी बगल दे अंदर तुहाडे नाल बैठा होया दूसरा प्रेमी दूजा सतसंगी नहीं जानदा ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਨ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤਨ ਆਰਾਮ ਪੂਰਵਕ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮਨ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੋ ਪਾਪ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਲੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਬਹਿਣਾ ਉੱਠਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਚੰਗੀ ਹੈ,
लोग कह देंदे ने गुरमुख है, पर मैं गुरमुख हाँ, मनमुख हाँ, यह मैनू खुद नू पता है ते या सतगुरु साहब जी नू पता है, गुरु ग्रंथ साहब जी नू पता है। खैर मैं एक बेनती करदा चला, डॉक्टर इकबाल तो इस तरह भी कहिंदे ने कि एक ही चेहरे पे हजार चेहरे बना लेते हैं लोग, यही चेहरा गुरुद्वारे दे अंदर कुछ होर दिसदा है, यही चेहरा दुकान दे उत्ते किसी होर रंग विच दिसदा है, यही चेहरा किधरे कारोबार दे अंदर होर रंग पकड़ के अपने उत्ते जमाया होया दिसदा है, यही चेहरा मां दे सामने हो रहे, पत्नी दे सामने हो रहे, धी दे सामने हो रहे, समाज दे सामने हो रहे, ते गुरुद्वारे दे अंदर हो रहे। गिरकत अपने रंग बदलदा है, मनुख अपने चेहरे दे मखौटे बदलदा है, ते मखौटे बदलन दी इहनूं बड़ी चंगी तरह जांच है। मखौटे किवें बदलने ने, किधरे गमी वाली जगह ते चला गया है, किधरे अफसोस करन वास्ते किसे दे घर वे जाना पिया है, उत्थे कोई सोख समाचार है, इहदे अंदर भावें गमी नहीं पर चेहरे दे उत्ते बनावटी गमी दा मखौटा पाउणा इहनूं आउंदा है कि बनावटी गमी चेहरे दे उत्ते किवें लियाई दी। किधरे खुशी वाली जगह ते चला गया है, किसे दे व्याह दे अंदर, किसे दे बच्चे दे जन्मदिन दे अंदर, किसे दे कारोबार दी ओपनिंग दे अंदर चला गया है। अंदर पावे जैलसी है, अंदर पावे ईर्षा है, पर बनावटी खुशी दा मखौटा बना के उन्हां नूं बधाई देन दी इहनूं बड़ी चंगी तरह आदत ते कुशल है। ये जानदा है कि खुशी दा मखौटा कदों पाउणा है ते कमी दा मखौटा कदों पाउणा है। खैर मेरा विशा नहीं सी, अंदर जो बुराई है उदा नाम पाप, जो बाहर बुराई प्रगट होके आ जाती है उदा नाम अपराध। बस एक नुक्ता याद रखो, अपराध बाहर हुंदा है ते पाप हमेशा अंदर हुंदा है। हुण अपराध ताई बनदा है ना जे पाप अंदर होवे, ते जे पाप ही अंदर ना रहे ते अपराध नूं पनपण वास्ते समा मिलेगा ही नहीं, अपराध बनेगा कित्थे। अगर जमीन विच तुसी बीज अंबां दा बीजिया ही नहीं, अंब दी गुठली बीजी नहीं, ते अंब दा बूटा पैदा भी किवें होएगा। जमीन दे अंदर एक जिमीदार जिस तरह दी फसल दा बीज बीजदा है उस तरह दे ते बूटे पैदा हुंदे ने दूजे ते नहीं। अगर बीज ही नहीं तो फिर बूटा भी नहीं। पाप नहीं ते कहना पएगा दुनिया दे अंदर अपराध भी नहीं दिसेगा। तो गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी गल जड़ तो फड़दे ने मुढ तो, उपरों उपरों रुख दियां एक दो टहनियां कट दईए उहदे नाल दुनिया दे अपराध पाप कतलो गारत गुंडागर्दी इह मिटने ते नहीं है। रुख दियां जड़ां अगर जमीन विच लगियां ने उपरों उपरों पत्ते झाड़ दिओ, पत्ते नवे आ जांदे ने, फुल तोड़ लैंदे हो फुल नवे आ जांदे ने, फल तोड़ के खा लैंदे हो फल फिर समा पा के नवे आ जांदे ने, टहणियां नूं आप कट देंदे हो दो टहणियां कट दे हो दो दूसरी शाखा दे उत्ते दूसरे टहने दे उत्ते नवीं शाखावां जन्म लै लैंदियां, एक टहनी नूं कट रहे हो दूजी नवीं जन्म लै रही है। यह सब कुछ क्यों है? क्योंकि अजे जड़ मौजूद है। अगर जड़ ना रह गए ते ना रुख दे उत्ते पत्ते आउणगे, ना फुल आउणगे, ना फल आउणगे, ना दोबारा दोबारा हरियाली आएगी। तो गुरु नानक देव साहब जी गल जड़ तो आरंभ करते हैं, कहन लगे भरीए मत पापा कै संग, अंदर किवें भरदा है पाप दे नाल। कहन लगे भरीए मत पापा कै संग, हुण अंदर दी मैल नूं धोण वास्ते ना ते कोई साबण, ना कोई सरफ, ना कोई होर लिक्विड, ना कोई पानी नहीं धुपेगी। हुण मैल धुपेगी किवें? पुछिया हजूर फिरे मैल जावे किवें? कहन लगे ओह धुपै नामे कै रंग, धुप जाएगी मायूसी दी लोड़ नहीं है। पर जिस साबण या निर्मल जल नूं वरतों विच लियाउण तों बाद ओह मैल जाणी है उहदा नां है परमात्मा दे गुण, परमात्मा दा चिंतन, ओह धुपै नामे कै रंग। एक बेनती मैं होर करदा चलां, सुखमणी साहब दी पाक बाणी नूं आप उचेचे तौर ते प्यार सहित पढ़दे जपदे सुणदे वेख्या जांदा है। सुखमणी साहब दे अंदर हजूर दा प्रमाण सोच करे दिनस अर रात, इहनूं लफ़ज़ नूं सोच नहीं पढ़ना, सोच दा मतलब है सोचना, सोच दा मतलब है विचारना, सोच सोच दा मतलब है जिवें आपां कहिंदे आ मैं तन पवित्र रखना है, तन सुचा रखना है। सोच करे दिनस अर रात,
मन की मैल न तन ते जात। कहन लगे दिन पर रात बारों सुचा हुंदा यतन करदा रहे, बिंद बिंद हाथ धोंदा रहे, बारों तो बिल्कुल पवित्रता रखण विच कामयाब दिसे। पर कहन लगे इस तरह करन दे नाल तेरे मन नूं की असर पएगा। ठीक है लोकां दे सामने इन्नी को तेरी इमेज बन जाएगी, बड़ा पवित्र है, बड़ा सुचा रह के चल रहा है, ये बिल्कुल भी झूठ दे नेड़े तेड़े नहीं जांदा, ब्राह्मण वांग बड़ी सुचता है, बड़ी पवित्रता है। पर तेरी उस सुचता दा मुल तां ही पैंदा है जे मन सुचा होवे। अगर मन सुचा नहीं तो फिर इस बारी पवित्रता दा ते बारी सुच दा कोई मैना नहीं, कोई अर्थ नहीं है। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप गुरु ग्रंथ साहिब जी दी ताबिया विच बहना चाहो ते लिबड़े तिबड़े आण के बह जाओ, तन साफ नहीं चाहिदा, ये मेरा मतलब नहीं है। जिहड़ी विखावे दी वाधू सोचे मैं उहदी गल कर रहा, जिहड़ी पखंड दे अंदर लेके चली जांदी उहदी गल कर रहा। हुणे आप श्री आसा जी दी वार दा कीर्तन सुन के हटे हो, पातशाह एक सलोक दे अंदर कह रहे सन गुरु नानक देव पातशाह के देके चौंका कड्डी कार, उपर आए बैठे कुड़ियार, मत पिटे वे मत पिटे, एहो अन्न असाडा फिटे, तन फिटे फेड़ करेन, मन झूठे चुली प्रेन। अखीर दे उते कहिंदे ने कहो नानक सच त्याईए, सुच होवे तां सच पाईए। हुण एक बेनती मैं होर करां, जे कोई तुहाडे ते प्रश्न करे भी तुहाडा गुरु उत्ते ते गल करदे ने भी चौंका देना, गोबर दे नाल लेप करना, कार कढ़नी, लकड़ियां धो के बालनियां, ये पवित्रता इहदा खंडन कर रहे ने, ते अखीरली पंक्ति विच जाके कह रहे ने सुच होवे तां सच पाईए, तो फिर गल विरोधी लगेगी ना, भी अखीरली पंक्ति विच कह रहे ने सुच होएगी ते तां सच मिलेगा। पर प्यारियो इहदा थोड़ा जिहा विश्राम दा ही भरम है, विश्राम देना तुहानू आ गया ते अर्थ अपने आप साफ हो जाएगा। हजूर कहिंदे ने कहो नानक सच त्याईए, सुच होवे तां, सुच हुंदी तां है सच पाईए, सुच बनदी तां है जे सच मिल जाए, सुच होवे तां सुच बनदी है अंदर दी, सच पाईए जे सच दे गुणा नू अपने हृदय विच वसा लवे। ते असीं की पढ़ के निकल जाने, सुच होवे तां सच पाईए। असीं एक विश्राम दे कारण अर्थां दे अंदर जमीन शमान दा फर्क खड़ा कर देने, सुच होवे तां सच पाईए। एक जगह ते मैनू गुरबाणी दा बोल होर भी चेते आउंदा है, पातशाह कहिंदे ने अंतर मैल गल मैं मन दी मैल ते तन दी मैल दी तुहाडे सामने रख रहा, क्योंकि फरीद साहब जी दा हुक्म अज इस तरह दा आया है। कहन लगे फरीदा मैं भुलावा पग दा मत मैली होए जाए, मैं ते पग दे भरम विच रहा कि मैली ना होए, मत मैली होए जाए, गहला रूह ना जाने कि सिर भी मिट्टी खाए, मैं सिर भी मिट्टी ने खा जाना, मैं ते सिर ते बत्ती पग दा ही बड़ा ध्यान रखे, मन मैला हो जांदा है, इहदा ध्यान किसे नूं है, तन मैला ना होए इहदा ध्यान सानूं सारिआं नूं है। भगत कबीर साहब जी कहिंदे ने अंतर मैल जे तीर्थ नावै तिस बैकुंठ ना जाना, गुरबाणी दे बचन ने और कबीर साहब दी रचना दे बचन ने। हुण इन्हां बचनां नूं सुनन तो बाद जे बंदे दे मन दा भरम ना जाए ते फिर ते खिमा चाहवांगा, महा अज्ञानता दे हनेरे विच ही इह खड़ा है, फिर ते इहनों ना गुरु दी आवाज सुनदी है ते ना किसे दूसरे दी। कह रहे ने अंतर मैल, अंदर तेरे होवे मैल, अंतर मैल जे तीर्थ नावे ते नौंदा फिरे 68 तीर्थां दे उते, अंतर मैल जे तीर्थ नावे तिस बैकुंठ ना जाना। कहन लगे इस तरह कम करन दे नाल मनुख नू बैकुंठ ताम नहीं मिलदा, परमात्मा दे चरण नहीं मिलदे। तिस बैकुंठ ना जाना, लोक पतीने कशु ना होवे नाही राम एयाना, लोक पतीने, पतीने मैंने पतीज जाना, पतीज मैंने विश्वास करना, लोक तेनू चंगा कहन, इस गल दे नाल कबीर साहब कहिंदे ने फर्क नहीं पैना। लोक पतीने तू लोकां दे सामने विखावे दी सोच रखे, कहन लगे इहदे नाल फर्क नहीं पैना, क्यों नहीं पैना, कहन लगे नाही राम एयाना, परमात्मा न्याणा नहीं है कि जो तेनू अंदरों जानदा नहीं,
ਉਹ ਸੁਗਣ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਵੇਖਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੂੰ ਬੜੀ ਸੋਚ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਘੱਟ ਵੇਖਣਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਣਗੇ। ਲੋਕ ਪਤੀਨੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਹੀ ਰਾਮ ਇਆਨਾ। ਅਗਾਂ ਇਸੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲ ਕੇ ਮੱਜਣ, ਮੱਜਣ ਮੈਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਜਲ ਕੇ ਮੱਜਣ ਜੇਗਤ ਹੋਵੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੇਂਢਕ ਨਾਵੇ, ਜੈਸੇ ਮੇਂਢਕ ਤੈਸੇ ਓਏ ਨਰ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੂਨੀ ਆਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਡੱਡੂ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਸ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇਰਾ ਡੱਡੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੀ ਰਹੀ, ਜੈਲਸੀ ਹੈ, ਈਰਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਪਟ ਹੈ, ਮਕਾਰੀ ਹੈ, ਚਲਾਕੀ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਧੜੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੁਗਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਵੇਖਣਾ ਮਾੜਾ, ਸੋਚਣਾ ਮਾੜਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮੇਂਢਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ, ਡੱਡੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਮੇਂਢਕ ਤੈਸੇ ਓਏ ਨਰ, ਓਏ ਮੈਨੇ ਉਹ ਨਰ ਮੈਨੇ ਮਨੁੱਖ, ਜੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਚੱਲਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ, ਕਪਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਤੇ ਮੈਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਕਪਟ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ, ਹਿਰਦਾ ਤੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਕਪਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਿਰਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੀ ਮੈਲ ਹੋਵੇ, ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ ਮੁੱਖ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਿ ਜੋ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਅਸਲੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ ਮੁੱਖ ਗਿਆਨੀ, ਝੂਠੇ ਕਹਾਂ ਬਲੋਵਸ ਪਾਣੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਲੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਦਾਨੀ ਕਿਉਂ ਪਾ ਕੇ ਰਿੜਕ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਦਾਨੀ ਪਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਦਾਨੀ ਪਾ ਲਵੇ ਤੇ ਮੱਖਣ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਦਾਨੀ ਪਾ ਕੇ ਰਿੜਕੀ ਜਾ, ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਿੜਕੀ ਜਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲੇਗਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ ਮੁੱਖ ਗਿਆਨੀ, ਝੂਠੇ ਕਹਾਂ ਬਲੋਵਸ ਪਾਣੀ, ਕਾਇਆ ਮੰਜ ਸਕਾਉਣ ਗੁਣਾ, ਜੋ ਘੱਟ ਪੀਤਰ ਹੈ ਮਿਲਣਾ ਮਲਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਇਆ ਮੰਜਸ, ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਂਜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਗੁਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਗੁਣ ਹੈ, ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟ ਪੀਤਰ ਹੈ ਮਲਣਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਗਿੱਟੇ ਗੋਡੇ ਧੋ ਕੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਉਣ, ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਇਤਨੀ ਛੂਆ ਛੂਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਸੁੱਚਤਾ ਰੱਖ ਲਓਗੇ। ਸੁੱਚ ਰੱਖਣੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਓਗੇ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਖਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿਰਿੰਜ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਰਿੰਜ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ? ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸਨ। ਅੱਜ ਹਰ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਡੱਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾ ਹੁਕਮ
रोक दिता गया कि तू तंबाकू सेवन नहीं करना। कारण सी उहदा, अज हर शराब की बोतल के उत्ते लिखा होया मिलदा है सेहत लई हानिकारक है। धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह ने गुरु नानक साहब जी की पाक बाणी ने सानू हुक्म ला के रोक दिता तू इस पासे नहीं जाना। खिमा चाहवांगा बोल मेरे कुछ खुले ने। अच थां थां दे उत्ते मीडिया दे अंदर रौला है कि एड्स की बीमारी का इलाज केवल परहेज है, पर धन श्री गुरु नानक देव पातशाह ने बा हुक्म रोक दिता कि बस संग एक ही शरीर का चाहिए, बहुत शरीर का नहीं चाहिए, ताकि तू तन करके भी तंदुरुस्त रह, तन करके भी रोगी ना बने, तन करके तंदुरुस्त रह, इस तरह के नियम बनाए, मन करके तंदुरुस्त रह, गुरबाणी तेरी चोली विच पाई, गुरबाणी दे नाल जुड़। पर साडा सारा जोर बाहरी सोच दे उत्ते लग जांदा है, अंदर सोच बनदी है नहीं बनदी है, इस पासे साडा ध्यान जांदा ही नहीं। ते मैं ते होर भी कई बार हैरान हुंदा, एक गुरु ग्रंथ साहिब जी दे कोल जाना है ते इशनान करके जाओ, पर दूसरा गुरु ग्रंथ साहिब की गुरु ग्रंथ साहिब नहीं है, दूजे दे कोल जाना है ते कोई परवाह नहीं, भावे कोई तीन दिन का नाता है नहीं नाता, ओदे कोल रौल लाउन जाना है ते कोई बंदिश नहीं है, एक दे कोल रौल लाउन जाना है ते इशनान करना लाजमी है। कम से कम मर्यादा ते एक बना लो, या ते कहो करके जाना है, या कहो सवेर दा कीता काफी है, या कहो हर रौल ते करना काफी, एक मर्यादा ते एक घर दी कायम कर लो। एक घर दे अंदर भी एक मर्यादा नहीं, एक गुरुद्वारे दे अंदर भी एक मर्यादा नहीं है। खिमा चाहवांगा तो खैर गल मैं मैल दी कर रहा सा, तन दी मैल नालों मन दी मैल हजार गुणा बदतर है। मन दी मैल हजार गुणा बुरी है तन दी मैल नाल, मन दी मैल अति बुरी है, निरंकार दे घर दे अंदर प्रवेश करन ही नहीं देंदी। अगर किसे दे तन दे उत्ते पाए हुए कपड़े कालख दे नाल परे होन, मिट्टी कटे दे नाल चिकड़ दे नाल परे होन, या उदा तन चिकड़ दे नाल परया होए, कि आप उन्हों कुट के गलवकड़ी दे अंदर लै के मिलदे हो, अगला चिकड़ दे विचों निकल के आया होए तो की कुट के गलवकड़ी दे अंदर लै के उन्हों आप मिलदे हो, मिलना चाहुंदे हो, पर ये कहिंदे हो कि पहला सजना इशनान पान कर, अपने तन दे कपड़े उतार, तन दे कपड़े बदल, तन दे कपड़े साफ कर, तन साफ कर, ते तां उन्हों आपां अपनी गलवकड़ी विच लै के मान देने हो उस तो पहला नहीं। जे तन मैला है ते असी अपनी गलवकड़ी विच नहीं लैंदे, ऐलानिया कह देना चाहुंना जे मन मैला है ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी गलवकड़ी दे विच भी नहीं आ पाओगे। गुरु ने वेखना है तेरा मन उज्जल है या नहीं है, पवित्र है या नहीं है। तन मैले वाले नूं असीं कोल नहीं बहन देंदे, मन मैले वाले नूं सतगुरु कोल किवें बिठाउणगे, सतगुरु दी गड़बकड़ी दा निग किवें पा सकेगा जिहदा मन ही मैला है। चलो मैं होर एक बेनती उदाहरण वजों करदा चला, दुनिया दे अंदर मां वास्ते सब तो अमोलक दात अमोलक चीज मां दे गर्भ विचों जन्म लैण वाला बच्चा है। बच्चा बालपन दी उम्र दे अंदर अपनी अनजानता दे कारण अपने ही मल मूत्र दे नाल अपने तन दे कपड़े नूं भर लवे ते मां दीआं अखां वेख लैण कि बच्चे दे तन दे कपड़े लबरेज हो गए ने, भर गए ने बच्चे दे मैले दे नाल, तो हुण मां लिबड़े तिबड़े बच्चे नूं इकदम चुक के अपनी छाती दा निक नहीं देंदी। पहला मां की काम करदी है, बच्चे नूं चुकदी है, उन्हों इशनान पान करवाउंदी है, तन दे कपड़े ला देंदी है, बदल देंदी है, दूजे कपड़े पवा के उन्हों साफ करके ते तां मां अपनी छाती दा निक देंदी है, उस तो पहला नहीं। हुण मन भी इस तरह ही, अगर मन भी लिबड़िया तिबड़िया है, मन मैला कुचैला है, ते गुरु दी छाती दा निक किवें पाओगे। मन पवित्र करोगे ते गुरु चरणा दे अंदर बहन दी जगह मिलेगी, वरना नहीं। तनासरी राग दे अंदर श्री गुरु नानक देव पातशाह दा एक बचन आउंदा है, कहन लगे दाग दोष लगे हुए कपड़िया दे उत्ते दाग, ते मन दे उत्ते दाग कादे लगदे ने मैलियां कर्मां दे, मन दे उत्ते दाग कादे लगदे ने मैलियां सोचां दे। हजूर गुरु नानक साहब जी कहिंदे ने दाग दोष मुंह चलिया लाए
तेरे मुंह दे उत्ते बड़े दाग लगे ने, दोष ने, अपराध ने, पाप ने, तेरा मुंह कालख दे नाल भरिया है, कलंकित है। कह लगे दरगाह बैसन नाही जाए, जाए दा अर्थे जगह। कह लगे सच दे घर दे अंदर बहन वास्ते तेनू जगह नहीं मिलेगी। दरगाह बैसन, बैसन मैंने बहना, नाही जाए, जगह नहीं मिलेगी। उथे आना है ते पूरा पवित्र होके आ, अधूरा पन नहीं चाहिदा। जितना समा मनुखी मन दे अंदर पूरी पवित्रता नहीं आ जांदी, उतना समा खुदा दे अंदर ए लीन नहीं हो सकता, दूर ही रहिंदा। इहनूं वार वार चांस मिलदा रहेगा, जन्म मिलदा रहेगा। ए जितना समा अपने आप नूं पवित्र नहीं कर लै, उन्ना समा परमात्मा दे चरणां विच बहन दा समा नहीं मिलेगा।

कंतय गम्यथ नानक सो सोहगनी जो पावे बेपरवाह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरबान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाक पवित्र अते निकी गोदा आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी श्रोते जनो आप रोज रोज श्रवण करते आ रहे हो लड़ीवार कथा भगत फरीद साहब जी दी पवित्र बाणी विचों। अज जो श्लोक आप संगत दे सन्मुख पढ़ के सुनाए गए, पहला श्लोक है अज ना सुती कंत स्यों अंग मुड़े मुड़ जाए, जाए पुछो डोहागनी तुम क्यों रहन बिहाए। पहला एक बेनती नु समझन दे यतन करो कि इस दुनिया दे अंदर औरत दा जामा ते पावे मर्द दा जामा है। जदों चर्चा परमात्मा दी चले उदों परमात्मा दे सामने आपां सारे नार दे रूप विच ते परमात्मा पति दे रूप विच है। इस जग में है पुरख एक है होर सगली नार सबाए। इत्थे जामे दा फर्क नहीं कि जामा औरत दा है जामा मर्द दा है। उपदेश ही कली औरत नूं है मर्द नूं उपदेश नहीं, उपदेश सांझा है। गल परमात्मा दी चल रही है इस करके भगत फरीद साहब परमात्मा नूं कंत कहिंदे ने, अपने आप नूं नार कहिंदे ने। वैसे भी तुहाडे ज्ञात लई मैं बेनती करदा चलां गुरबाणी नूं ध्यान दे के पढ़ो। गुरबाणी दे अंदर किधरे परमात्मा नूं मां, किधरे पिता, किधरे पुत्र, किधरे भाई, किधरे बंधु कह के बुलाया गया सत्कारिया गया। किधरे किधरे गुरबाणी दे अंदर परमात्मा नूं मालक ते स्वामी कहा गया, गोपाल कहा गया। गुरबाणी दे अंदर परमात्मा दे संबंध विच कबीर साहब इस तरह भी कहिंदे ने, कहे कबीर गुलाम घर का जी आए भावे मार। परमात्मा मैं तेरे दर दा गोला गुलाम हां और तेरी गिरफ्त विच हां, हुण मर्जी तेरी है तू मैनू जिंदा रखे तां भला है, तू मैनू मार देवे मेरा तां वी कोई इतराज नहीं। उत्थे अपने आप नूं गोला ते परमात्मा नूं मालक मन रहे ने। सूफी संतां ने तकरीबन तकरीबन परमात्मा नूं महबूब जानिया और अपने आप नूं महबूबा दी जगह दे उत्ते मन्निया है। तकरीबन सूफी संतां दा किरदार इस तरह दा है, परमात्मा नूं महबूब मन्नदे ने, अपने आप नूं महबूबा मन्नदे ने। तो जद परमात्मा महबूब है तो फिर लफज भी उस तरह दे वरतों विच लियाउणे पैणगे। भगत फरीद साहब जी ने लफज बयान किते अज न सुती कंत स्यों, कंत मैने परमात्मा, कंत दा आखरी अर्थ वैसे हुंदा है पति, ते साडा पति कौन है परमात्मा। अज मैं पति परमात्मा दा मलाप नहीं जानिया, पति परमात्मा दे नेड़े नहीं हो सके। जीव स्त्री परमात्मा दे संबंध विच कह रही है अज मैं परमात्मा दी नेड़ता नूं मन करके नहीं पा सके। ते परमात्मा दे नेड़े तन ते हुंदा नहीं, हुंदा ते मन। परमात्मा दे मलाप दा आनंद मन नूं मिलना है। मन ही परमात्मा पति दी शेज दे उत्ते जाएगा, तन दा जाना ही बड़ा मुश्किल। तन किवें लैके जाओगे, तन ने ते मर भी जाना है, मुक भी जाना है, तन बिरद भी हो जाता है, तन सड़ भी जाता है, तन पसम भी हो जाता है। जाना मन ने है परमात्मा दे दर दे उत्ते। अज मेरा मन परमात्मा दे नाल नहीं जुड़ पाया। जोड़दा समय रोज रोज सुबह तो शाम तक परमात्मा दे नाल, अल्लाह दे नाल अपने मन नूं। अज किसे कारण दे करके मेरा मन परमात्मा दे नाल नहीं जुड़िया। मैं परमात्मा दे नाल सौ नहीं सकिया। सौन दा मतलब है मिलना। अंग मुड़े मुड़ जाए
मेरे सारे शरीर दे अंदर बेचैनी है, मन दे अंदर बेचैनी है। ते बेचैनी किथे बनदी है? मन दे अंदर। मिलाप दा रस किथे बनदा है? मन दे अंदर। मिलन वाला कौन है? मन। अज मेरे मन दे अंदर बेचैनी है। बेचैनी किस गल दी है? क्योंकि जो परमात्मा रोज रोज मिलदा सी, उनु मिलन करके कोई ना कोई नवा रस जीवन दे अंदर रोज बनदा सी, नवा रस रोज पैदा होंदा सी। अज परमात्मा दा मिलाप भी नहीं हो सकिया, किसे कारण मैं परमात्मा नू अराद नहीं सकिया, अज वो रस भी नहीं बनिया। ते रस नहीं बनिया ते मन दे अंदर चिड़चिड़ापन ते क्रोध दा जन्म होया। तुहाडे विचों जिहड़े कुछ प्रेमी रोज अमृत वेले जागण वाले ने, नित नेम करन वाले ने, या कुछ सज्जन अभ्यासी ने, उन्हां नू मेरी बेनती दी पकड़ ज्यादा आएगी। किसे मजबूरी दे कारण किसे दिन अमृत वेले ना जाग सकन, या किसे मजबूरी दे कारण, कम कार दे कारण, या शरीर ठीक ना होवे इस कारण उह नित नेम ना कर सकन, या कोई थोड़ा समा बह के परमात्मा दे नाल सुरत नू ना जोड़ सकन, सारा दिन उन्हां दा इस तरह बीतदा है जिवें कोई बड़ी कीमती चीज जेब दे अंदरों निकल के ते गुम हो गई है। सारा दिन उन्हां दा चिड़चिड़ेपन दे अंदर, क्रोध दे अंदर रहिंदा है। सारा दिन बेचैनी विच बीतदा है। क्यों? क्योंकि जो रस रोज रोज मिलदा सी ओ रस अज नहीं मिलिया। रोज अमृत वेले जागदा सी, अज जागिया नहीं गया। रोज नित नेम दीयां बाणियां दा जाप करदा सी, अज कीता नहीं गया। रोज सुरत नूं शब्द दे नाल जोड़न दा तहैया करदा सी, अज नहीं जोड़ सकिया। तो जो रोज रोज खुराक खाण दी मन नूं आदत पै जाए, वो किसे दिन खुराक ना मिले ते मन फिर रोएगा, मन कलपेगा कि अज वो खुराक दित्ती क्यों नहीं, अज वो भोजन जो रोज रोज मिलदा सी अज वो भोजन कित्थे गया, क्यों नहीं मिलिया। मन इस तरह बेचैन हो जांदा है। और इस मेरी बेनती दी समझ सारियां नूं ते नहीं पैगी। आप जितने हो उन्हां नूं समझ पैगी जिन्हां ने रोज रोज मन नूं नाम दा रस देण दा आदि बना लिया है, जिन्हां ने रोज रोज मन नूं परमात्मा दे नाल जोड़ के रस देण दी आदत पा ली है, उन्हां नूं मेरी बेनती दी समझ ज्यादा आएगी। वैसे भी जीवन जिहड़ा साडा चलदा है उह चलदा ही रस दा बजा होया है। इह जिहड़ा शब्द है, शब्द दे अंदर रस दा ही जिक्र है कि अज कंत मिलिया नहीं ते रस नहीं मिलिया, ते मेरे अंग टुट रहे ने, मन मेरा बेचैन है, मन विच चिड़चिड़ापन है। ते मैं उन्हां दोहागणा नूं पुछदा जिन्हां ने कदी कंत दे नाल बहिण दी जात सिखी नहीं, कंत दे मिलाप दा रस पाया ही नहीं, कि तुहाडी जीवन रूपी रात किस तरह बीतदी, तुम क्यों रहण बिहाए रहण मैंने रात, ते गुरबाणी नूं ध्यान दे के पढ़ो जीवन सारा ही एक रात है। हजूर दा फरमान, एक रैन के पाहुन तुम आए, पाहुन मैंने परौने, कहन लगे एक रात दा परौना बन के आया है, बहु जुग आस बंदाए, ते लम्मियां जुगां जुगांतरां दियां आसां ला के बह गया है, आया है केवल एक रात वास्ते, एक रैन के पाहुन तुम आए। तो अर्ज मैं कर रहा सा, साडा जीवन चलदा है रस दे आसरे, और वो रस सानू मिलदा है मां कोलों, रस मिलदा है पिता दे पासों, रस मिल जांदा है अगे चल के पत्नी कोलों, पति कोलों, तियां कोलों, पुत्रां कोलों, कुछ रस सानू कपड़े कोलों, कुछ रस सानू भोजन पासों, ते कुछ रस सानू बाकी दे समूह पदार्थां कोलों। पदार्थां कोलों, परिवार कोलों मनुखी जीवन दे अंदर रस बनदा है ते रोज बनदा है। हुण जिस मनुख दे जीवन दे अंदर मां भी ना रहे, पिता भी ना रहे, पत्नी भी ना रहे, पति भी ना रहे, धीआं पुत्र भी किनारा कर जन, ते पदार्थां वल्लों भी बिल्कुल नगण हो जाए, मुफलस हो जाए, अति गरीब बन जाए, पदार्थ भी ना रहे, तन दौलत भी ना रहे, शरीर दी तंदुरुस्ती भी ना रहे, इस तरह दे मनुख दा जीवन बेरसा हुंदा है, बेरसा। क्योंकि जीवन चलना है किसे रस दे आसरे ते, रस मिलदा है सानू काम क्रोध लोभ मोह हंकार विचों, रस मिलदा है सानू परिवार विचों,
रस मिलदा है पदार्थ विचों, हुण परिवार भी किनारा करके चला गया, पदार्थ भी कोल नहीं रहे ते शरीर दी तंदुरुस्ती भी नहीं रही, तो कहना पेगा ना जीवन बेरस है। इस तरह दा मनुख हार के कदी कदी एक फैसला ले लैंदा है कि जद मेरे कोल हुण रस ही नहीं तो हुण मैं जीवन नूं रख के करना भी की है, जीवन दी लीला नूं खत्म कर दई है। तो इस तरह दा मनुख फैसला लैंदा है कि अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे हम, मरकर बिना चैन आया तो किधर जाएंगे हम। वो कहिंदा है कि हुण अपने आप दी हत्या कर लई है, आत्म हत्यारा बन जाना चाहिदा है, अपने जीवन दी लीला अपने हत्थां दे नाल समाप्त कर लेनी योग है। पुछिए क्यों, वो कहिंदे जद जीवन दे अंदर रस ही नहीं तो जीवन रख के करना भी की है, मां भी नहीं है, पत्नी भी नहीं है, भैन भी नहीं है, भाई भी नहीं है, तंदुरुस्ती भी नहीं है, ते फिर उस तो बाद पदार्थ भी नहीं है, कुछ भी ते कोल नहीं, तो जद कुछ भी पास नहीं तो हुण जीवन नूं भी पास रख के की करना है, इनू खत्म कर लिए ताकि दुखां तो छुटकारा हो जाए। पर बड़ा वड्डा एक भरम है, अगर आत्म हत्या करन दे नाल जां मर जान दे नाल दुखां तो छुटकारा हुंदा तो फिर जो जन्म लेंदिया सार कुछ बच्चे अपाही जन्म लेंदे ने, लूले लंगड़े जन्म लेंदे ने, नेत्रहीन जन्म लेंदे ने, कमले जन्म लेंदे ने, फिर ए जन्म क्यों ले रहे ने, आखिर किसी ना किसी कर्म दा फल ही इन्हां नूं मिल रहा, किसी कर्म दे फल कारण ही ते लूले लंगड़े अपाहिज नेत्रहीन या बावरे जन्म लेंदे ने। मरण तो बाद दुखां दा छुटकारा नहीं है, दुखां दा छुटकारा करन वास्ते सानू मिलिया है जीवन, जो मरदे दम तक दुखी रहा, दुख दे विच जीवन चलाउंदा रहा, मरण तो बाद एकदम दुख किवें मुकेगा। अगर मरण तो बाद दुख मुक जांदा है फिर ते किसे पाठ पूजा कथा कीर्तन भजन बंदगी दी लोड़ भी की है, क्योंकि मरना भी सारिया ने है ते दुख भी सारिया दा गलों लै जाना है, मुक जाना है, फिर लोड़ की है तमाम चंगे कर्म करन दी, पाठ पूजा भगती दे राह ते चलन दी फिर की लोड़ है। तो खैर मैं अर्ज कर रहा सा, मनुख दा जीवन चल रहा है किसे ना किसे रस दा बजा होया। हुण दूसरी बेनती, रस भावें संसारी होवे ते रस भावें निरंकारी होवे, बड़े ध्यान नाल मेरी इस बेनती नूं समझण दी कृपा कर लियो। बेशक रस दुनियावी है ते बेशक रस धर्म दी दुनिया दे उत्ते चलदिआं चलदिआं मिलिआ है, रस रब्बी है जां रस संसारी है आम दुनिया विचों मिलिआ। रस दी समझ उहनूं ही हुंदी है जिन्ने रस नूं जाणिआ है, जिन्ने रस नूं चखिआ है, जिन्हें रस नूं चखिया नहीं उन्हों रस दी समझ पाएगी भी के। आप गुरुद्वारे आए हो, गुरुद्वारे दे अंदर चंगे चंगे खान वास्ते पदार्थ बन गए, लड्डू मठियाई जलेब बन गए, पकौड़े बन गए, दाल सब्जी बन गई, प्रशादा पूरियां बन गए, बड़ा कुछ बनिया, तुसी ए प्रशादा छकिया, तुहानू समझ पई कि प्रशादा स्वाद सी जां नहीं स्वाद सी, प्रशादे दा आनंद बड़ा लिया। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਲੰਗਰ ਬੜਾ ਰਸ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤੋ ਕੀ ਇਹ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦਾ ਰਸ ਪਰੋਸ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। चलो मैं एक होर बेनती करा, खादा तुसी है, रस नू तुसी जानदे हो, जिन्ने सुनिया उन्हूं रस दे बारे समझ नहीं पई। हां वो सुन के गुरुद्वारे आ जाए लंगर छक लै ते उन्हूं समझ पै सकदी, कला सुनन दे नाल नहीं। रब नू जिन्ने जानिया रब दे नाल जुड़न दा रस उन्हूं ही मिलिया है, उन्हें चखिया है, उन्हें जानिया है। हां ये ठीक है कि जिन्हां ने रस नू चखिया है ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਰਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗੇ ਰਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਰੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰੋਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਬੇਰਸਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਰਸ ਭਰਪੂਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਰਸੀ,
अपने मन दे अंदर बेरसी, परिवारां दे अंदर बेरसी, एक घर दे सी समेल दी चार दवारी दे अंदर रह के भी कोई आनंद मगर नजर नहीं आंदा, बेरसा जीवन बतीत कर रहे ने सब लोग विरलिया विरलिया नूं छड के। कारण कारण है कि परमात्मा दा रस जानिया नहीं। खैर होर मैं बेनती कर रहा सां, भगतां दे जीवन दे अंदर एक इस तरह दा मूड आउंदा है, भगतां दे जीवन दे अंदर एक इस तरह दा मूड आया जिस मूड दे उते आके भगत खामोश हो गए, एवें कह लो बिल्कुल चुप धारण कर गए। ते साडी दुनिया दा दस्तूर यह है कि दो जने आपस दे अंदर बोलदे होण, उत्तर प्रश्न करदे होण, सवाल जवाब करदे होण, दोवां विचों एक बोली जाए दूजा चुप कर जाए, ते साडी दुनिया दा मनना है जिहड़ा चुप कर गया इहनूं कासे दा पता नहीं होना, जवाब देण जोगा मटीरियल नहीं होना, ते जां इहनूं कुछ ज्ञान नहीं जो खामोश है जो जवाब नहीं दे रहा। आम दुनिया ही सोचदी अगर इह सच्चा हुंदा ते अगों बोलदा ना, जवाब देंदा ना। भगतां दे जीवन दे अंदर एक इस तरह दा मूड आया जिथे जाके भगत बिलकुल हार गए। मैं लफज ना वर्तन योग वर्त रहा, भगत हार गए दुनियादारी दे तौर दे उते, भगत चुप कर गए। है ते भगत जेतू पर दुनिया दे सामने उन्होंने चुप करन ते मजबूर होना पिया। सारा बनारस एक सुर दे अंदर प्रश्न करदा है कि कबीर साहब, रविदास साहब, जे तुसी रब जी दे नाल अपने मन नूं जोड़ के रस नूं पा चुके हो, तुसी कह भी रहे हो कि परमात्मा है, परमात्मा दा रस है और वो रस असी जानिया भी है, पर साडा प्रश्न है जे तुसी रस नूं जानिया है ते फिर बयान करो रस हुंदा किवें दा है। ते कल दे सलोक विच आपने सुनिया सी किवें बयान करिए, की कहिए कि वो रस शहद वर्गा है, रस मिश्री वर्गा है, रस गुड़ वर्गा है, रस दुध वर्गा है, किस वर्गा रस है? परमात्मा दे रस दी ते कोई उदाहरण नहीं, वो अपनी उदाहरण आप है। भगत कबीर साहब जी दे उत्ते प्रश्न होया कि बोलो रस पाया है ते दसो, बोल के दसो रस किस तरह दा है। ते हुण भगत जी उन्हां लोकां दे सामने चुप हो जांदे ने, अखीरी लोकां वल्लों बोशार करके प्रश्न आ रहे ने, तड़ातड़ प्रश्न आ रहे ने, ते कबीर साहब अखीरी बोले ने, कहन लगे कहो कबीर गुंगे गुड़ खाया पूछे ते क्या कहिए। कहन लगे सजनो अगर एक गुंगे मनुख नू आप मठियाई खाण वास्ते दियो, चंगा स्वादला भोजन खाण वास्ते पेश करो, ते भोजन खवान तो बाद उदे उत्ते प्रश्न करो भी बोल के दस इहदा रस किस तरह दा है। हुण उस भोजन दा रस गुंगे नू आया ते है, ते आया भी जरूर, इहदे विच कोई शक नहीं, क्योंकि गुंगे दे चेहरे दे उत्ते जिहड़े खुशी दे चिन्ह प्रगट होए, उन्हां चिन्हां तों समझ आ रही है, निशानियां तों समझ आ रही है इहनूं भोजन दा रस मिलिया है। पर जे आप चाहो कि गुंगा मनुख जुबान दे नाल बोल के बयान करे कि रस किस तरह दा हुंदा है, ते गुंगे दे वस विच नहीं है। रब जी दे राह दे उत्ते चलदियां चलदियां जद कोई रब्बी रस दे नाल भरदा है, ते सच जानिया जे उहदे पास उस रस नूं पेश करन लग्गियां लफज रहिंदे नहीं है। अगर वह रस लफजां विच पेश हो जांदा है ते फिर उहने रस नूं पाया ही नहीं है। मैं उदाहरण दित्ती सी लफजां दे अंदर ते खाधे हुए भोजन दा रस परोस के तुसी दूजे दे सामने पेश करना चाहो नहीं हुंदा। आप किधरे दूर दराडे सैर सपाटा करन वास्ते चले जांदे हो, पिकनिक ते चले जांदे हो, कोई चंगी थां वेखदे हो, रमणीक जगह वेखदे हो, समुंदर दा किनारा है, सवेर दा समा है, घा दे उत्ते त्रेल पई नजर आ रही है, लहरां बणदियां मिटदियां नजर आ रहियां ने, सूरज दियां किरणां सुनहरी रंग दियां बड़ा मनमोहना जिहा दृश्य पैदा कर रहियां ने, इह सारा रस घूमण फिरन दा सूबा दा नजारा तुहानूं मिलिया है, उह नजारा लफजां दे राहीं परोस के आप अपने किसी सज्जन मित्र दे सामने बयान करना चाहो तो कि सज्जन नूं लफजां दे राहीं उह नजारा दिस जाएगा। जो रस तुसी पाया वह रस तुहाडे सुनन वाले श्रोते नूं आ जाएगा नहीं मिलेगा। आम दुनियावी चीजां दा रस लफजां दे राहीं परोसिया नहीं जांदा, परमात्मा दा रस ते बिल्कुल ही नहीं परोसिया जांदा।
परमात्मा जानन दा विशा है। परमात्मा नू जिन्ने थोड़ा बहुत जानिया है उन्हें रस नू मानिया है, जिन्ने नहीं जानिया उदे अंदर प्रश्न ही पैदा हुंदा रहिंदा है, परमात्मा भी नहीं, परमात्मा दा रस भी नहीं। ये कहावतां ने, ये गल्लां ने, परमात्मा ग्रंथां दे सलोकां विच बंदे, परमात्मा नामी कोई चीज नहीं है। उदे अंदर इस तरह दे बलबले चलदे ने, इस तरह दे उत्तर प्रश्न उधेड़ गुण उदे अंदर चलदी है। तो मैं अर्ज कर रहा सन लफजां दे भांडे विच परमात्मा दे रस नू परोस के किसे दे सामने पेश करना बड़ा मुश्किल है। अगर परमात्मा ही एक लफजां दे बर्तन विच परोसिया जांदा है ते फिर परमात्मा साडे भांडे तो वड्डा नहीं है, साडे बर्तन तो वड्डा नहीं है। जो चीज मेरे भांडे विच आ गई वह भांडे तो वड्डी नहीं है, जो चीज मेरी खोपड़ी विच आ गई मेरी खोपड़ी तो वड्डी नहीं है, जो मेरे लफजां दे बोलन विच आ गया वो मेरे लफजां तो वड्डा किस तरह होया, जो मेरे समझन विच आ गया मेरी समझ तो वड्डा किस तरह होया, जो मेरे बोलन विच आ गया मेरे बोलना तो वड्डा किस तरह होया। परमात्मा बेअंत है, ना वो खोपड़ी दे प्याले विच आउंदा है मुकम्मल तौर ते समझ विच आउंदा है, ते ना उहदे मिलाप दा रस ही लफजां दे भांडे विच परोसिया जांदा है। उहदा रस भी बर्तन विच आउंदा नहीं है, समाउंदा नहीं है, परमात्मा बेअंत ही रह जांदा है। असीं उहनूं भांडे दे अंदर परोसण दा यतन करदे हां पर वेखदे हां कि बहुत सारा बर्तन तो बाहर ही पिया है, बेअंत पिया है, था पिया है। गुंगे मनुख दे कोल जुबान ते हुंदी है पर गुंगे मनुख दी जुबान दे कोल इह समरथा नहीं हुंदी कि उह लफजां दे उदेड़ गुण कर सके, लफजां नूं जन्म दे सके और लफजां दे राहीं किसे नूं कुछ समझा सके। परमात्मा दे राह दे उत्ते चलदा चलदा मनुख एक अवस्था दे अंदर पहुंच के गुंगे वाली हालात विच हो जांदा है। लोग पुछदे ने रब दे मलाप दा रस ते उहदे कोल परोसण दा कोई जरिया नहीं हुंदा, किवें पेश करे कि रस इस तरह दा है, लोग कह देंदे ने पागल है। इस तरह ही कबीर साहब दे नाल होया है, लोगां ने पुछया है कि बयान कर रस किस तरह दा है, ते कबीर साहब कहिंदे ने कहो कबीर गुंगे गुड़ खाया पूछे ते क्या कही है, ते लोगों ने ताड़ी मार दिती झूठ बोलदा है पागल है। लोग कहें कबीर बौराना, सारे लोगों ने एक सुर होके कह दिता है कबीर बौरा है, कबीर पागल है, कबीर बौराना। पर कबीर साहब कहिंदे ने कबीर का मरम राम पहचाना, कबीर दे असली भेद नूं ते उहदा राम जानदा है, परमात्मा जानदा है। लोग की जानन कि मैनू रस मिलिया है ते किस तरह दा मिलिया। गुरबाणी दे अंदर एक होर भी बचन आउंदा है, जे हौ जाना आखा नाही कहना कथन ना जाए। जे मैं जान भी जावा परमात्मा तू इस तरह दा है ते आख्या नहीं जांदा, जे हौ जाना आखा नाही कहना कथन ना जाए। तू मेरे कहन दे अंदर मेरे कथन दे अंदर आउंदा ही कदों है, जे मैं जान भी लेना कि परमात्मा तू इस तरह दा है मेरे कहन कथन दे अंदर आउंदा ही कदों है। अज दा इह सलोक भगत फरीद साहब जी ने जो बख्शिया कि अज न सुती कंत स्यों अंग मुड़े मुड़ जाए। अज मैं परमात्मा दे नाल अपनी आत्मा नूं मिला नहीं सकिया, अज मैं मन नूं रब जी दे नेड़े कर नहीं सकिया, मैनूं जो रस रोज रोज कंत परमात्मा दे नाल मिलन तो बाद मिलदा सी, सुरत नूं शब्द दे नाल जोड़न तो बाद मिलदा सी, अज ओह रस नहीं मिलिया। भगत फरीद साहब जी दे सलोक दा सेंट्रल आइडिया केंद्री भाव इस तरह है। एक होर भी बेनती करदा चलां, कदों महान रस मिलदा है जदों छोटे रस वलीन हो जांदे ने, चले जांदे ने, या फिर इस तरह कह लो कि छोटे रस मिलदियां वड्डा रस मिलदियां छोटे रस अपने आप चले जांदे ने। बालपन दे अंदर हर बच्चा खड़ौणियां दे नाल खेडदा है, गुड़ियां पटोलियां दे नाल खेडिया जांदा है, पर जद ओ बाल बालपन दी उम्र नूं छड्ड के जवानी दियां दलहीजां दे उत्ते आण के खड़ा हुंदा है तो की उदों वी उहनूं खड़ौणियां दी लोड़ पैंदी? सियाणप वधन दे नाल, उम्र दा तकाजा वधन दे नाल खड़ौणे अपने आप छुट जांदे ने, उहनां नूं छड्डण दी लोड़ नहीं पैंदी।
अध्यात्मिक दुनिया दे अंदर धर्म दे राह दे अंदर जिवें जिवें कोई वड्डा ते उचेरा रस मिलदा है दुनियावी रस अपने आप छुटने शुरू हो जांदे ने मदम पैने शुरू हो जांदे ने। अगर कोई कामी है क्रोधी है निंदक है लोभी है तरह तरह के बुराई दे रस दे नाल भरिया है ते ओ ए गल कहिंदा कि मैं रब्बी रस नूं भी पा लिया है बिल्कुल कोरा झूठ बयान कर रहा है। या ते रब्बी रस है ते या फिर बुराइयां दा रस है। जिथे रब्बी रस आ जांदा है उथे बुराइयां दे रस नूं रहण वास्ते जगह मिलदी कदों है इह ते अपने आप चले जांदे ने। इस तरह बेनती करां कि जे समझ होवे जो मेरे हाथ दे अंदर चीज फड़ी है ये कौडियां ने ये भी समझ होवे जो मेरे सामने चमक दे रहा है ये कोही नूर हीरा है कोही नूर हीरा हाथ दे अंदर आउंदियां कौडियां नूं छड्डदियां देर नहीं लगदी अपने आप उह छुट जांदियां ने। वड्डी चीज दे मिलदियां छोटी चीज अपने आप छुट जांदी है उहनूं छड्डन दी लोड़ नहीं पैंदी पर यह समझ होवे कि यह वड्डी है ते यह छोटी है इन्नी परख जरूर होवे इन्नी समझ जरूर होवे। वड्डी लग्जरी कार दे मिलदियां छोटी कार अपने आप चली जांदी है सीस मैल दे मिलदियां ही छोटा कार अपने आप चला जांदा है चंगा कपड़ा मिलदियां ही खद्दर अपने आप चला जांदा है चंगा भोजन मिलदियां ही सादा भोजन जवार बाजरा अपने आप चला जांदा है। पर समझ होवे कि इन्हां दोवां विचों चंगा केड़ा है इन्हां दोवां विचों म्यार नीवा किहदा है हौला किहड़ा है। महान दे मिलदियां ही छोटा अपने आप वलीन हो जांदा है चला जांदा है। अगर साडे मन दे अंदर काम क्रोध लोभ मोह निंदा चुगली दा रस है ते पूरी तरह भरिया है ते खिमा चाहवांगा फिर रब्बी रस नूं अजे नहीं पाया। जिस दिन रब्बी रस दियां बूंदां मिलणगियां ये अपने आप ही जाने शुरू हो जाणगे छुटने शुरू हो जाणगे इन्हां नूं कहण दी लोड़ नहीं कि तुसीं चले जाओ छड्डन दी लोड़ नहीं अपने आप छुट जाणगे पर शर्त यह है कि इन्हां दी जगह दे उत्ते कोई ना कोई दूसरा आउणा चाहीदा है और आउणा चाहीदा है महान आउणा चाहीदा है वड्डा तां इह रस छुट्टणगे। गरीब नवाज की बाणी का एक बचन मैं तुहाडे सामने रखदा चलां पातशाह कहिंदे ने रस सोइना रस रूपा कामन रस परमल की वास रस कोड़े रस शेजा मंदर रस मीठा रस मास। कहन लगे रस सोइना तू ते सोने नूं अपने शरीर दे उत्ते पा के इथों भी रस लै रहे कड़ा पाया मोटा लोकां नूं विखा रहे कांटे पाए ने मोटे लोकां नूं विखा रहे शिंगार तकरीबन तकरीबन लोकां नूं विखाउण वास्ते रह गया खिमा चाहवांगा शिंगार लोकां दी नुमाइश वास्ते रह गया। शिंगार हुंदा सी केवल पति दी खुशी वास्ते पर अज लोकां दी नुमाइश वास्ते पति दी खुशी वास्ते नहीं। खिमा चाहवांगा बोल मेरे कुछ इस तरह दे ने जो तू सोना अपने तन दे उत्ते गहिणियां दे रूप विच हंडा के रस लै रहा है सोने विचों तैनू रस मिल रहा है अरूपा चांदी विचों रस मिल रहा है कामन कामन मैंने औरत औरत विचों रस मिल रहा है रस रूपा रस सोइना रस रूपा कामन रस परमल की वास तू ते इथों भी रस लै रहा है कि थोड़ा जिहा परफ्यूम महंगा लैके अपने तन दे कपड़िया दे उत्ते ला लिया है ते इहदे अंदर ही फुली जा रहे हैं अहंकार करी जा रहे हैं। परमल की वास किन्नू कहिंदे ने सुगंधी नूं चंदन दी महक नूं अगर तू महक दा छुड़काव कर लिया है तू इन्ने इन्ने दे अंदर ही अपने आप नूं वड्डा समझ रहे हैं दूजे नूं छोटा समझी जा रहे हैं। रस परमल की वास रस घोड़े कारा चंगियां तेरे कोल ने घोड़े चंगे तेरे कोल ने रस शेजा मंदर मंदर घर भी चंगा तेरे कोल है ते घर दे अंदर शेज भी मखमली तेरे कोल है। आखिया रस घोड़े रस शेजा मंदर रस मीठा रस मास ये सारे रस तेरे कोल ने इते रस शरीर के कह घट नाम नवास दस परमात्मा दे नाम दा रस तेरे अंदर नवास करे किते टिके किते जिथे टिकना सी ओ जगह तू खाली कीती नहीं परे हुए बर्तन दे अंदर किसे नूं कहिए होर पदार्थ पा होर भर किवें भरेगा तुहाडी थाली भोजन दे नाल पहले ही भरी पई है उपरों होर कौके दे विच पाई आ किथे अगला पावेगा अगर पाएगा ते बाहर डुलेगा अंदर समाउण दी ते जगह है नहीं अंदर टिकन दी ते जगह है नहीं।
इन्ने रस तेरे अंदर ने, वस्तु अंदर वस्त समावे दूजी होवे पास। पहला अपने अंदरों थोड़ा जिहा इन्हां रसां नूं विलीन कर, इधरों नाल नाल रब्बी रस नूं लियाउण दा यतन कर। एक दिन आएगा ये सारे रस चले जाणगे, परमात्मा दा रस तेरे अंदर टिक जाएगा। दूसरी बेनती मैं एक संगत दे सामने होर करदा चला। लंगर दे अंदर तरह तरह दे स्वादिष्ट भोजन बने हुंदे ने, लड्डू जलेब मठियाइयां। मिठे दी गल मैं करनी उचेची मिठे दी। आप अपना पात्र लेके हथां दे अंदर थाल लेके अगे अगे वधदे तुरे जांदे हो। लंगर वरताउण वाला लंगर पाउण वाला तुहाडे पात्र दे अंदर तुहाडे बर्तन विच भोजन पाई जा रहा है। जिहड़ी चीज खाण वास्ते तुहाडा मन ते ललचा रहा है, पर नाल ये भी आवाज आ रही है कि ये पदार्थ खाण दे नाल तेरी शुगर वध जाएगी, तेरे तन दा रोग वध जाएगा। बेशक मन चाहुंदा है कि ये चीज मैं खा लवां, पर अपनी बीमारी वल ध्यान करके तुसी ओ चीज लैण तों गुरेज कर देंदे हो, परहेज कर देंदे हो। जलेब पए ने, वरताउण वाला तुहानू देना चाहुंदा है, तुहाडे मन दी आवाज भी है कि खा लेने चाहीदे ने, पर जिवें ध्यान आउंदा है बीमारी वध जाएगी, शुगर वध जाएगी, तुसी थाल पिछे कर लैंदे हो, नहीं लैंदे। जो रस तुहाडे शरीर नूं माफक नहीं, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਦਸਤੂਰ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਚਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਰ ਚੁਗਲੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਚਲ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਨਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣਨੀ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਈ ਜਾਓਗੇ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਗਲ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਦੀ। ਤੇ ਪਾਗਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰੋਗ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਗ ਘਟਣਾ ਹੈ। ਮਸਤਾਨੇ ਅੱਧ ਕਮਲੇ ਲੋਕ ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਲੀ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਭਰਾ ਵੀ ਹਰ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਵੱਧ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਬਣਦੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਰੂਦ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਗੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ। ਇਹ ਰਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਦੀ, ਸਹਿਜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਉਹ ਰਸ ਲਓਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਓਗੇ। ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਰੇ ਰਸ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਰਸ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਮ ਦਾ ਰਸ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਦਾ ਰਸ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਰਜ ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰਸ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਰਸ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਚੱਲਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਣ ਰਸਾ, ਆਣ ਮੈਨੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ, ਦੂਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਆਣ, ਆਣ ਰਸਾ ਜੇਤੇ ਤੈ ਚਾਖੇ ਨਿਮਖ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇਰੀ ਲਾਥੇ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈ। ਆਣ ਰਸਾ ਜੇਤੇ ਤੈ ਚਾਖੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਿਮਖ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇਰੀ ਲਾਖੇ ਲਾਥੇ। ਹਰ ਰਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚਾਖੇ ਸਾਧ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਦ ਜਾਣ। ਹਰ ਰਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚਾਖੇ ਸਾਧ, ਚਾਖਤ ਹੀ ਹੋਏ ਰਹੇ ਬਿਸਮਾਦ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ ਪੀਓ ਪਿਆਰੀ, ਇਹ ਰਸ ਰਾਤੀ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਪਤਾਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਤੇ ਲੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ ਨੂੰ ਖੀਵਾ ਕਰ ਇਸ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ
कि जदों आप भोजन छकदे हो उदों नाल दी नाल तुहानू भोजन दे रस दी समझ पै जांदी है। पहला टुकड़ा पहली बुरकी मुख विच पाई ते तुहाडी जुबान रस दी परख करके दस देंदी इहदा रस कौड़ा है, रस मिठा है, रस खट्टा है, रस लूना है, रस चटपटा है, रस नमकीना है। तुहाडी जुबान परख कर देंदी इस भोजन दा रस किवें है। इस तरह ते नहीं है ना कि भोजन खाओ अज ते रस बनेगा आने वाले कल नूं, या भोजन खाओ अज ते रस बनेगा एक हफ्ते बाद, वीक बाद, महीने बाद, साल बाद। इस तरह का नियम ते नहीं है, यह दस्तूर ते नहीं। धर्म की दुनिया के अंदर भी यही दस्तूर है। यह मत सोचो कि मैं बाणी का जाप कर रहा मैनू अज रस नहीं मिलिया, इहदा रस कल नूं बन जाएगा, नहीं बनेगा। जो हुण करद्या करद्या रस नहीं आया उहदा कल नूं भी रस नहीं बनेगा। गुरबाणी का चिंतन भजन करद्या करद्या रस नालों नाल पैदा होंदा है, नालों नाल उस वक्त। ते जे नालों नाल रस नहीं बनिया उस खाधे भोजन का रस कल नूं भी नहीं बनेगा। साडा मन इस भरम के अंदर है हुण करी चलो इहदा लाभ अगले जन्म मिलेगा। शुरुआत अज तो है, अगर अज पदार्थ का रस नहीं मिलिया कल नूं किवें मिलेगा। तुसी हुण बुरकी मुंह विच पाईए रस हुणे है, जुबान विचों हुण वैगरू कटो, रस नालों नाल मिलना चाहिए। नहीं मिलिया ते समझ लो भोजन सही ढंग दे नाल खाधा नहीं गया। जपजी साहब हुण जपिया हुण पढ़िया इहदा रस हुणे ही बनना चाहिए है, नालों नाल ही। इस भुलेखे विच ना रहो कि मेरा काम पढ़ना है ते रस बनेगा आने वाले कल नूं, हुणे रस नाल नाल बनेगा। अगर नहीं बनिया तो फिर सही ढंग दे नाल जाप होया नहीं है, सही ढंग दे नाल भजन कीता नहीं गया। अगर रस होने नहीं बनिया फिर मैं दोबारा उचेचे तौर ते बेनती कर रहा, भोजन खाओ रस नालों नाल बनता है, भजन करो रस नालों नाल बनता है। कीर्तन आप अज सुन रहे हो ते अज दे सुने हुए कीर्तन दा रस की कल नूं जाके मिलेगा। कथा तुसी ऐस वक्त बह के दरबार विच सुन रहे हो ते की हुण दी कीती कथा दा रस आउण वाले तीन दिनां बाद बनेगा। अगर तुहानूं रस कथा विचों आ रहा है ते हुणे आ रहा है, नहीं आ रहा ते इहदा रस कल भी नहीं आएगा। अगर कीर्तन सुनदिया सुनदिया हुण रस नहीं बनिया कल नूं नहीं बनेगा। बाणी पढ़द्या पढ़द्या हुण रस नहीं बनिया कल नहीं बनेगा। भजन बंदगी करद्या करद्या रस बनना चाहीदा है नालों नाल, नहीं बनिया ते फिर कदी भी नहीं बनेगा। अगर भोजन पक्का होवे, थाल दे अंदर परोसिया होवे, परपिया होवे साडे तों दूर, ते उस भोजन दा रस जुबान नूं नहीं मिलदा। भावें उह भोजन किन्ना सवादला होवे, किन्ना चंगा होवे, पर थाल विच परोसिया है, दूर पिया है, उहदा रस तुहानूं की समझ आई कि भोजन खट्टा है, भोजन मिठा है, भोजन कौड़ा है, नहीं जान पाए उहदा रस की। भजन भी अगर मन तो दूर रहा, गुरबाणी मन तो दूर रही, कथा मन तो दूर रही, कीर्तन मन तो दूर रहा, ते दूर पै भोजन दा रस भी नहीं मिलता, दूर पै भजन दा रस भी नहीं मिलता। दोबारा मैं इन्हां लफ्ज़ां नूं दोहरा दिया, भोजन जुबान तो, भोजन मुख तो दूर है, वो भोजन सदा कुछ सवारेगा नहीं जिहड़ा बाहर पिया है, उहदा रस बनेगा भी नहीं। जो गुरबाणी उपदेश साडे मन दे बार बार है, मन विच ज्ञान है, ना मन नूं तृप्त करेगा, ना रजाएगा, ना उहदा रस बनेगा, जो मन तो बार बार है। तो बेनती करदा चला, भगत फरीद साहब कहिंदे ने अज ना सुती कंत सियो। अज मैं अपने कंत, कंत मैंने पति, पति मैंने परमात्मा, पति परमात्मा दे मलाप दा रस नहीं जान पाया। कुछ सत्संगी नवे आए, गल नूं मैं दोबारा दोहरा रहा, सूफी संत तकरीबन तकरीबन परमात्मा नूं महबूब मनदे ने, अपने आप नूं महबूबा मनदे ने, ते फिर लफ्ज़ भी उस तरह दे वरतने पैणगे। जे परमात्मा प्रेमी है, अपने आप नूं प्रेमिका दी जगह दे उत्ते मन्निया गया, ते फिर लफ्ज़ भी उस तरह दे परोणे पैणगे। भगत जी कहन लगे मैं अपने कंत परमात्मा दे नाल मिलन दा रस अज नहीं मान पाया, अंग मुड़े मुड़ जाए, मेरा सारा दिन मन बेचैनी विच रहा, चिड़चिड़ापन रहा, क्रोध वार वार मन विचों जन्म लैंदा रहा, क्योंकि जो रस रोज रोज मिलदा सी अज ओह रस नहीं मिलिया। ते जिहड़े रोज रोज दे अभ्यासी ने उहनां नूं मेरी बेनती दी पकड़ ज्यादा आएगी। वाकई
मन खिजिया रहिंदा है अगर किसे दिन मजबूरी दे कारण गुरुद्वारे ना आ सको। रोज आउन वाले एक दिन ना आ सकन मन खिजिया रहिंदा है। रोज सुनन वाले एक दिन ना आ सकन मन विच क्रोध बनदा रहिंदा है, चिड़चिड़ापन रहिंदा है। इस तरह रहिंदा है जिवें कोई कीमती पदार्थ अज मेरे कोलों गवाच गया होवे, कोई वस्त गुम होई होवे। कहन लगे जाए पुछो दोहागणे तुम क्यों रहन बिहाए। मैं उन्हां दोहागणा नूं साखतां नूं मन मुखां नूं पुछदा कि तुहाडी जीवन रूपी रात किवें गुजरदी, जिन्हां ने कदी रब नूं चेते कीता ही नहीं, भुल के जुबान दे उत्ते वाहिगुरु जाप लियांदा ही नहीं, परमात्मा दे गुणां दा जाप कीता ही नहीं, उन्हां दी जीवन दी रात किवें गुजरदी है। भारी गुजरदी है, बेचैनी विच गुजरदी है। एक तंदुरुस्त मनुख ते एक बीमार मनुख, इन्हां दोवां दी रात दे अंदर वड्डा अंतर है। बीमार सारी रात करवटा बदलदा रहिंदा है, हौके भरदा रहिंदा है, जागदा रहिंदा है, बेचैनी विच रहिंदा है, ते तंदुरुस्त लम्मियां तान के कूक नींदरा विच सुत्ता मगन नजर आउंदा है। इन्ना ही फर्क है एक गुरमुख दी रात ते एक मनमुख दी रात दे अंदर। रात जीवन है, पूरा जीवन एक रात है। एक रहन के पाहुण तो मैं आए, पूरा जीवन रात है। कईयां दा जीवन बीतदा है ते बीतदा है हौके पर्दियां झोरियां दे अंदर, कले कलेश दे अंदर, मन मुटाव दे अंदर। पदार्थ बड़ा है पर मन मुटाव भी बड़ा है। सुख देने वाले साधन पदार्थ ते बड़े ने, लग्जरी कारां ते कोल ने, सीस महल ते कोल है, कपड़ा भी बड़ा है, भोजन भी बड़ा है, तन दौलत पदार्थ भी बड़ा है, पर नाल दुख भी बड़ा है। जीवन दी रात बीतती है दुख दी पंड चुक है, ते कईयां दी जीवन दी रात बीतती है बड़े आनंद दे अंदर। भावे उन्हां दा घर छोटा है, कार छोटी है, पदार्थ थोड़ा है, पर आनंदित बड़े ने, बड़े आनंद दे अंदर ने। एक बेनती मैं होर करदा चला। आनंद दे संबंध विच सुनिया ते है कि आनंद हुंदा है, पर आनंद नूं जानिया किन्नियां ने है, इहदा जवाब तुसी अपने कोलों आप मंगो कि आनंद नूं जानिया किन्नियां ने है। बचपन दे अंदर असी खड़ौणियां विचों आनंद लभण दी कोशिश करदे रहे, खड़ौने मिल गए पर खड़ौणियां विचों आनंद ना मिलिया। मां बाप खड़ौने बदल बदल के देंदे रहे, किसी खड़ौने विचों भी आनंद ना बने। सिजे सिजे बालपन पिछे रह गया ते जवानी अगे आ गई, जवानी दियां दलहेजां ते कदम आ गए। जवानी दे अंदर मन विचों एक आवाज पैदा हुई, पत्नी मिल जाए ते शायद आनंद मिल जाए, पति मिल जाए ते शायद आनंद मिल जाए। जवानी दे अंदर पत्नी मिल गई पर आनंद ना मिलिया, पति भी मिल गया आनंद नहीं मिलिया। मन फिर हवा दी तरह जिवें गुब्बारे हुंदे ने, ते गुब्बारे दी परत बड़ी पतली हुंदी, इस तरह बिल्कुल कमजोर गुब्बारे मन तैयार कर करके सानू देंदा रहिंदा है। दलीलां दे अंदर उलझाई रखदा है, अगे अगे दौड़ाई रखदा है। मन ने फिर एक आवाज दिती कि आनंद तां बनेगा जे तेरे घर दे अंदर एक दो बच्चियां दा जन्म होवे। घर दे अंदर दो तियां दा, दो पुत्रां दा जन्म होया, चार पंज छे बच्चियां दा जन्म होया, ते आनंद दा जन्म तां भी ना होया। मैं झूठ बयानी नहीं कर रहा, तुसी सारे इस गल तो जाणो कि ब्याह कराउण तो बाद आनंद बन जांदा है, तियां पुत्रां नूं जन्म देण तो बाद किसे दे जीवन विच आनंद बणिया। मैं ते कुरजदे कलपदे होया नूं मिलिया, कोई हजारां विचों एक आनंद भरपूर मिलदा है। चलो फिर मन दी वासना अगे चली गई। मन ने कहा कि हुण इह बच्चियां नूं जन्म दिता है, इन्हां दी लालना पालना करना भी मेरा फर्ज है, इन्हां दी लालना पालना कर लेंगा ते शायद जीवन दे अंदर आनंद बन जाएगा। बच्चियां नूं पालना पोसना शुरू कीता, पढ़ाउणा लिखाउणा शुरू कीता। सोचिया कि चलो इन्हां दे कारज कर लवां, इन्हां दे विआह कारज कर लवां ते शायद जीवन दे अंदर आनंद बन जाए। बच्चे पढ़ लिख के डिग्री वाले बन गए, डिग्री होल्डर बन गए, कोई साइंटिस्ट बनिया, कोई डॉक्टर बनिया, कोई वकील बनिया, कोई जज बनिया, बच्चे ते पढ़ लिख गए, पर जीवन दे अंदर आनंद अजे भी नहीं। बल्कि की होया, ओ जेड़ी कल्पना सी ओ नाल नाल चलदी चलदी डिप्रेशन दा रूप धारण कर गए, कले कलेश डिप्रेशन दी बीमारी बन गए। इनू हिंदी दे अंदर फोबिया भी कह देंदे ने, फोबिया दी बीमारी बन गई। तो खैर जो मैं बेनती कर रहा सा,
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਏ, ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਨਾ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਤੇਰੇ ਫਤਿਹ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨੌਵਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹੇ ਗਏ, ਪਰਨਾਏ ਗਏ, ਆਪ ਬਜ਼ੁਰਗਵਾਰ ਜਿਤਨੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲਵਾਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਬਣ ਗਿਆ। 100 ਸਾਲ ਦਾ ਬਿਰਧ ਬਾਬਾ ਮਰਨ ਦੀ ਛੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਬਾਬਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਈ ਕਿ ਆਨੰਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ, ਆਨੰਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ, ਇਹ ਲਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੋਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਕੀ, ਵੇਖਣ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਆਏ ਸਨ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸੀ। ਤੋ ਜੀਵਨ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਬਾਲਪਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਾ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਾ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਪਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਖਿਡੌਣੇ ਮਿਲਣੇ ਨੇ, ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਲਪਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੂੰਹਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੋਤਰਿਆਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਾਲਪਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਨੰਦ ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਲਪਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਪੈਰੇ ਦੇ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਬਾਲਪਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਾ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਨਾ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਦੋਹਾਗਣੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਗਣਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਤੁਮ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤੀ, ਦੁੱਬਰ ਰਾਤ, ਪਾਰੀ ਰਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਆਪ ਚੌਪਈ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨੇਮ ਨਿਭਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਵੇਖਿਆ, ਜਦ ਉਹ ਮਰਦਾ ਹੈ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾ ਹੁਕਮ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸੁਖਮਨੀ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਣ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਖਮਨੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਤੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਦੀ ਇਹਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਲਿਆ।